1.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की आश्विन माह की 16वीं तिथि तदनुसार 8 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर

0: 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, जीवन में गिरना बुरा नहीं, गिरकर फिर उठना सबसे बड़ी हिम्मत है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 335। पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए इस श्रृंखला का 8वां भाग। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन, संवादिका हैं ममता सिंह और संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। सुबह 7 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है दीपा महेश्वरी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री राजश्री पर। आलेख और स्वर जी शाम का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान, फिल्म लेखक निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम, यादों की महफिल सजेगी 12:05 से, सुरीला सफर तय करेंगे 1 बजे से। 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे हेलो फरमाइश। संपादन है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 5:30 पर तराने नए पुराने। 7:00 आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम और उसके पहले 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए, गायक भवदीप जयपुरी वाले से निमी मिश्रा की बातचीत, प्रस्तुति कांचन प्रकाश। 8:00 सुनिए हवा महल में नाटिका हम किसी से कम नहीं, लेखन है चंद्र किरण सुनार किसे का और निर्देशन है चंद्रप्रभा भटनागर का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, आपके लिए कार्यक्रम रात 9:00। 10:00 सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ।

वानर और आसुरी सेना का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वानर भालुओं का संहार करते रावण को लक्ष्मण ने चुनौती दी। रावण तो अपने पुत्र घाती को ढूंढ ही रहा था। उसने उन पर प्रहार

आरंभ कर दी। लक्ष्मण ने उसके लाखों अस्त्र काट डाले, उसके रथ को वाणों से खंडित कर दिया। 100-100 वाण उसके दसों सिरों पर मारे और उतने ही वाण उसकी छाती में। रावण मूर्छित हो गया, किंतु मूर्छा अवस्था से उठते ही उसने ब्रह्मा से प्राप्त अस्त्र लक्ष्मण को छाती में मारा, जिसके प्रहार से वे धरती पर गिर पड़े। रावण ने उन्हें उठा लेने की चेष्टा की, किंतु शेषनाग के रूप में जिसने पूरे भुवन को एक तिनके के समान अपने फन पर उठा रखा है, उसे भला रावण कैसे उठा सकता। रावण को लक्ष्मण के शरीर को उठाने का प्रयत्न करते देख हनुमान जो आगे आए तो उसने उन पर घूंसे से प्रहार किया। अपने को संभालते हुए हनुमान ने उसे जो घूंसा मारा तो रावण एक बार फिर मूर्छित हो गया। इस बार मूर्छा टूटने पर रावण यज्ञ करने के लिए अपने महल की ओर चल पड़ा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 335।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। श्रोताओं, जिनके कंठ में संगीत है, शब्दों में साहित्य है, अभिनय में जीवन है और साधना में अपने देश की आत्मा बसती है, ऐसे कलावंत का सानिध्य पाना किसे नहीं अच्छा लगेगा। शेखर सेन हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और तबले पर इनका साथ निभा रहे हैं आशीष विश्वास जी, जिनकी उंगलियों की थाप ऐसी है कि देखते ही बनती है। तो हम आशीष विश्वास जी का एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। आशीष जी नमस्कार। शेखर दादा, एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार।

0: नमस्कार और सभी संगीत सरिता के श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम। आज की कड़ी में मैं चाह रहा हूं आपको एक और भारतीय संगीत के एक महान विभूति से
1: जी।
0: आपका दोबारा परिचय करवाऊं और इनका नाम था पंकज कुमार मल्लिक या पंकज मलिक
1: जी जी,
0: जिन्होंने न केवल बांग्ला में और हिंदी में संगीत निर्देशन दिया और कई अमर गीतों की रचना की, बल्कि इन्होंने तमिल फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी जी,
0: आप उस युग की सोचिए कि जिस समय 50 की शुरुआत में भारत में इस तरह का आदान प्रदान हो रहा था कि एक बंगाल के संगीतकार जाके तमिलनाडु में संगीत दे रहे थे
1: जी।
0: तो उनकी एक फिल्म है उनके संगीत निर्देशन में, 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था यात्रिक
1: जी,
0: इसका एक गाना था। मुझे ये रचना बहुत पसंद है, ये मेरे जन्म से 9 साल पहले की बंदिश है, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं होती हैं जो सुन सुन करके आपको एक अलग अनुभूति होती है
1: जी।
0: तो ये गाना था इस तरह का।

0: राग विहाग पर ये रचना आधारित है
1: जी।
0: लेकिन इसको फिल्म यात्रिक में गाया था, उस समय गायक थे बीरेन बल
1: जी,
0: बंगला में बीरेन बॉल उनको कहेंगे, तो बीरेन बल जी की आवाज में। मैं चाहूंगा कि सारे श्रोता अब जो ओरिजिनल गाना था
1: जी।
0: वो सुनिए, राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।

0: शिखर दादा, राग विहाग का आपने जिक्र किया, तो राग विहाग के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे और कुछ गाकर बताएंगे?
1: राग विहाग हमारे उत्तर भारतीय संगीत का बड़ा ही प्रसिद्ध राग है, और अगर कोई गायक ये कहे कि मुझे विहाग नहीं मालूम
0: जी,
1: तो पक्का जानिए कि उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा। तो ये उस तरह के रागों में से, जो हमारे यहाँ कुछ राग बड़े कहे जाते हैं
0: जी,
1: जो जिनको आप 2 घंटे 3 घंटे गा सकते हैं, विहाग, यमन, हाँ, दरबारी, मालकौंस, उस श्रेणी का ये राग है।

0: दादा आपने राग विहाग के बारे में बड़ी ये जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, अब बताइए अब क्या सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
1: जैसे हमारी हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में राग विहाग बहुत महत्वपूर्ण राग है, वैसे ही एक राग बड़ा ही मधुर है और उसका नाम है राग श्री।
0: जी,
1: हमारे यहाँ इस राग को बहुत कठिन राग भी माना गया है और संगीत में जो तंत्र साधना होती है या माँ की उपासना होती है, शक्ति की पूजा, उसमें जिन रागों में हम साधना करते हैं उसमें से एक श्री राग है।
0: जी।
1: बड़ा सिद्ध राग है और जिन गायक की आवाज में आपको मैं ये रचना सुनाने जा रहा हूँ उनका जन्म हुआ था 1921 में और उनका देहांत हो गया था दुर्भाग्य से 1955 में।
0: जी।
1: तो सिर्फ 34 वर्ष वो जिए और ये थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के एकमात्र सुपुत्र, डीवी पलुस्कर जी के नाम से हम उनको जानते हैं। और बहुत छोटा सा जीवन होते हुए भी, जबकि वो जब बड़े हो रहे थे तब तक उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई अपने पिताजी के ही एक शिष्य विनायक राव पटवर्धन जी से।
0: जी जी।
1: और फिर उन्होंने जितने भी हमारे पास आज रिकॉर्डिंग्स हैं पलुस्कर जी की, चाहे वो पायो जी मैंने हूँ या ठुमकी चलत रामचंद्र हो या चलो मन गंगा जमुना तीर हो, जानकी नाथ सा, ये सब डीवी पलुस्कर जी की आवाज़ में है। पर मूलतः जो डीवी पलुस्कर जी थे वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के गायक थे और उनकी एक बंदिश बहुत ही मशहूर है राग श्री में, और वो मैं चाहता हूँ, राग श्री बड़ा सुंदर राग है, उसका छोटी सी झलक आपको सुना रहा हूँ।
0: जरूर सुनाएं।

0: मैं चाहूंगा कि डीबी
1: जी
0: पलुस्कर जी के स्वरों में आप सुने, अद्भुत अनुभूति आपको होगी और आपको लगेगा कि सचमुच में संगीत का जो आध्यात्मिक रंग होता है, जिसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं, उसकी अनुभूति आप कर सकेंगे। हरि के चरण

0: और अब हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि इस अद्भुत रचना के बाद हमें अनुमति लेनी होगी अपने श्रोताओं से. लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार.
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम मिलेंगे अगली कड़ी में.
0: जी,
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं. आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी. आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन. तबला संगत आशीष बिस्वास. तकनीकी सहायक HR पाटले. संपादन सहयोग झरना सोलंकी. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक. अब दीजिए अनुमति. नमस्कार.

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज हम भारत की सुरक्षा, साहस, शौर्य और देशभक्ति के एक गौरवशाली अध्याय को याद करने जा रहे हैं। आज का विषय है वायुसेना दिवस, जिसे हम भारतीय वायुसेना के गौरव और वीरता को नमन करने के अवसर के रूप में मनाते हैं। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें केवल बादल, सूरज और तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर वायु योद्धाओं के लिए यही आसमान उनका कार्य क्षेत्र है। हजारों फीट की ऊंचाई पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपने प्राणों की चिंता किए बिना देश की रक्षा करना भारतीय वायुसेना के जवानों के साहस की पहचान है। श्रोताओं, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अपनी स्थापना के समय से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना ने देश की

रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ इसकी क्षमता, तकनीक, प्रशिक्षण और युद्धक शक्ति में लगातार विकास हुआ है। आज भारतीय वायुसेना केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, राहत और बचाव अभियानों और देश के नागरिकों की सहायता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

क्षेत्र पर होने वाले अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारे वायु योद्धा अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, परिवहन विमानों और विभिन्न तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से देश की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। भारतीय वायुसेना ने देश के सामने आए अनेक सुरक्षा संकटों और युद्धों में अपना अदम्य साहस दिखाया है। 1947-48, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल संघर्ष जैसे कठिन समय में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से कारगिल युद्ध के दौरान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में वायुसेना ने साहस और कुशलता का परिचय दिया। यह केवल विमानों की शक्ति नहीं थी, बल्कि उन विमानों को उड़ाने वाले पायलटों का साहस, तकनीकी कर्मचारियों की मेहनत और पूरे संगठन की एकजुटता थी। किसी भी देश की सेना की शक्ति केवल उसके हथियारों से नहीं होती, उसकी वास्तविक शक्ति होती है उसके सैनिकों का साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण में।

श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि थल सेना जमीन की रक्षा करती है और नौसेना समुद्री सीमाओं की। उसी प्रकार भारतीय वायुसेना देश के आकाश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन वायुसेना की भूमिका केवल आकाश की रक्षा तक सीमित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह जमीन और समुद्र

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का। नमस्कार अलवर कार्यक्रम जारी है, मिलते हैं एक छोटे से संदेश के बाद।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओं, भारतीय वायुसेना के जवानों को कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, फिर भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। उनके लिए सबसे पहले आता है राष्ट्र की सुरक्षा और देशवासियों की रक्षा। हमारे वायु योद्धाओं के परिवार भी इस त्याग में बराबर के भागीदारी होते हैं। जब कोई जवान देश की सेवा के लिए घर से दूर रहता है, तब उसके परिवार के सदस्य भी उसके कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझते हुए उसका साथ देते हैं। इसलिए हमें केवल सैनिक को ही नहीं बल्कि उनके परिवार के त्याग को भी सम्मान देना चाहिए। श्रोताओं, भारतीय वायुसेना की भूमिका युद्ध तक सीमित नहीं है। जब देश में बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, भूकंप आता है या कोई अन्य बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तब भी वायुसेना राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक भोजन, दवाइयाँ और आवश्यक सामग्री पहुँचाना और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, ऐसे कार्यों में वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना केवल देश की सीमाओं की पहरी ही नहीं बल्कि आपदा के समय देशवासियों की मददगार शक्ति भी है।

श्रोता, वायु सेना में शामिल होना केवल एक नौकरी प्राप्त करना नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करना है। एक वायु योद्धा को शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी अत्यंत सक्षम होना पड़ता है। उसे कठिन परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेना, दबाव में शांत रहना और टीम के साथ मिलकर काम करना सीखना पड़ता है। वायुसेना हमें ये संदेश देती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, उसके लिए अनुशासन, अभ्यास, मेहनत और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। यही गुण हमारे जीवन में भी बहुत उपयोगी हैं। आज भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना में आधुनिक तकनीकी स्वदेशी प्रणालियों और अत्याधुनिक विमानों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में निर्मित तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का विकास केवल सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं करता, बल्कि देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योगों को भी आगे बढ़ाता है। आज का भारत केवल सुरक्षा के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहने वाला भारत नहीं है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को स्वयं विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

श्रोताओं, भारतीय वायुसेना में महिलाओं की भूमिका भी लगातार मजबूत हुई है। आज महिलाएं विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक और परिचालन भूमिकाओं में देश की सेवा कर रही हैं। ये बदलता भारत है जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आसमान भी चुनती हैं। हमें अपनी बेटियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और अवसर देना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार देश की सेवा कर सके। श्रोताओं, वायुसेना दिवस केवल सैनिकों को सलाम करने का दिन नहीं है, यह युवाओं के लिए प्रेरणा लेने का भी दिन है। हम अपने जीवन में भले ही सैनिक ना हों, लेकिन हम में से हर व्यक्ति देश के विकास में योगदान दे सकता है। एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़कर देश की सेवा कर सकता है। एक डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा करके देश की सेवा कर सकता है। एक शिक्षक अच्छे नागरिक तैयार करके राष्ट्र निर्माण कर सकता है। एक किसान अन्न पैदा करके देश को मजबूत करता है। एक वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करके देश को आगे ले जाता है। और एक जिम्मेदार नागरिक कानून का पालन करके, पर्यावरण की रक्षा करके और समाज में सद्भाव बनाए रखकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। इसलिए राष्ट्रीय सेवा केवल सीमा तक जाकर ही नहीं होती, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी राष्ट्रीय सेवा है। आज वायुसेना दिवस के अवसर पर हम उन सभी वीर वायु योद्धाओं को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी वीरता हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उनके साहस की कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रहेगी कि राष्ट्र से बड़ा कोई स्वार्थ नहीं, कर्तव्य से

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक मुझे यानी अनीता शर्मा को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। इस समय 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के आरंभ में आपने सुना बदलते रिश्ते फिल्म का ये गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत बहलाल का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है,

बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एक बार मुस्कुरा दो, इस फिल्म का गीत आप भी आपने सुना। आवाजें थी मुकेश और आशा भोसले और साथियों की। गीत इंदिवर का, संगीत ओपी नायर का।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आपने सुना पहचान फिल्म का ये गीत। गीत रचना इंदिवर की और संगीत शंकर जयकिशन का।

मुकेश की आवाज थी, फिल्म का नाम कभी कभी, गीत साहिर का और संगीत खय्याम का। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर की सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली की यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक

0: आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
1: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना

0: का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
1: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है, जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुजान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
3: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी बीच में हम बैठते हैं।
4: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
5: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
6: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जाओ
4: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
4: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
6: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
4: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेइचिंग में मानुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंकज उदास की गाई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

पंकज उदास की गई इसी गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितंबर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी।
3: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल,
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्य

0: या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
1: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
0: जी,
1: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
0: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का, तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
0: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षा प्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: जी, तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
1: जी,
0: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
1: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
0: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
1: जी, तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहां वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
0: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
1: जी,
0: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
1: जी,
0: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
1: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
0: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
1: और इसे प्रदान कौन करता है?
0: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं, बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
1: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
0: जय हिंद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।

0: इंसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
1: मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा।
0: भालू ने कहा,
2: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
0: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
2: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
0: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
2: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
0: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना, जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं।

0: आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

सन 1980 अप्रैल का एक दिन।

0: सी तो बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
1: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से?

है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे, तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है दीदी, चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

0: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
2: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तक में उसके प्राण हैं। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
1: चलो
3: चलो
1: चलो।
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्शद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं FM 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए आज लोक सूचना जारी। 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के तहत एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। और प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 7,744 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आज लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र 13 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकनों की जाँच 14 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और हनुमानगढ़ जिला परिषदें शामिल हैं। राज्य में पात्र और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने से शेष रह गए पात्र नागरिकों और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 7 दिनों में 57,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्री महाजन ने पात्र नागरिकों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा अन्य पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का आयोजन आज

0: से नई दिल्ली के यशो भूमि में शुरू होगा। चार दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। सुरक्षित डिजिटल तंत्र विकसित करने के साथ वैश्विक सहयोग, निवेश और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान पर भी विचार किया जाएगा। यह आयोजन दूरसंचार विभाग और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। सेवा सेतु अभियान 2026 के तहत बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा कराने पर करदाताओं को छूट दी जाएगी। कल से शुरू हुए अभियान के तहत आयोजित शिविरों में बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% और शास्ति में पूरी छूट मिलेगी। ये छूट आवासीय और व्यावसायिक भवनों तथा भूखंडों के बकाया गृहकर पर लागू होगी। वहीं वर्ष 2025-2026 तक की बकाया नगरीय विकास कर पर ब्याज और शास्ति पूरी तरह माफ की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण में अभियान के तहत जोनवार विशेष सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जेडीए के उपायुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 16 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध कराना है।
1: सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति जो पट्टा लेने के लिए पात्र है उसको पट्टा दिया जाए, मौके पर ही उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। और ये 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का ये कैंप है। इसमें समस्त प्रकार की जो सेवाएं, जैसे मान लीजिए लीज होल्ड से फ्री होल्ड है या नाम ट्रांसफर है या अन्य प्रकार की जो भी वो सर्विस लेना चाह रहा है, तो उसमें सभी में अलग अलग प्रकार की छूट दी हुई है। जो 10 जून का एक सर्कुलर सरकार का निकला था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और कैंप में आने वाले व्यक्ति के लिए 2-3 चीजों की सहूलियत है कि उसको कैंप में आने के बाद लगातार उसका फाइल का मूवमेंट उसको पता रहता है। कोशिश ये रहती है कि जो सुबह आ रहा है तो दोपहर तक या शाम तक वो अपना पट्टा लेके जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल, इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर ने एकीकृत हवाई अभियानों की निर्णायक क्षमता को फिर से स्थापित किया और देश की संप्रभुता की रक्षा करने की सेना की क्षमता और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर एयरबेस पर एयर शो आयोजित किया जा रहा है। ये प्रदर्शन वायुसेना के मल्टी लेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत होगा। सुबह 10 बजे शुरू होने वाले एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के किरण हॉक विमान, सारंग टीम के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान तेजस हवाई करतब दिखाएंगे। तेजस के कोबरा मैनुअर सहित अलग अलग हवाई करतब दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे। गौरतलब है कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 12 देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। जयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐतिहासिक स्मारकों पर सैलानियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जंतर मंतर की अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं।
2: अभी पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और अभी 4 दिन की छुट्टी लगातार है। उस दौरान तो 8,000 टूरिस्ट पर डे आए हैं हमारे पास, और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए हमने प्रॉपर तैयारियां कर रखी हैं। हमारी तैयारियां पूरी कंप्लीट हैं। टूरिस्ट आए यहां पे और इधर कंफर्टेबली उसकी यात्रा रहे, वो आराम से भ्रमण करे, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमारी पूरी टीम इसके लिए तैनात है।
0: प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 7,744 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक ही दिन में प्रदेश भर में 17,000 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में करीब

0: 12,000 पुलिसकर्मियों की 2,961 टीमें शामिल रहीं। गिरफ्तार लोगों में 55 इनामी अपराधी, 354 हिस्ट्री शीटर और अन्य अपराधी तथा 922 वारंटी और फरार आरोपी शामिल है। अभियान के दौरान 787 नए मामले भी दर्ज किए गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत निशुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2026-2027 के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई है। योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर CM अनुप्रति कोचिंग आइकन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए आज लोक सूचना जारी। 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के तहत एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। और प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 7,744 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला दिल्ली से।

0: सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू।
1: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू हैं?
2: तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जिस सुधार की आप बात कर रही हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। टुडे देयर आर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाबल मंडप, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धि

0: क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से लगभग उस समय से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी पीएमओ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है। इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDSDMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल शब्दों में,
0: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए द सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, दे आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया। थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप दो या तीन थिएटर्स बनाए, एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजन्स, सो पश्चिमी तट की ओर, एक एट द ईस्टर्न होराइजन्स या चाइना, वेस्टर्न होराइजन्स पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, और एक मैरिटाइम थिएटर। और दो तीन, जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर, बट वंस यू से वेस्टर्न होराइजन्स, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इन टू दिस वन थिएटर कमांड। अब देखिए CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इट्स नॉट आर्मी टेकिंग इट्स प्लान, नेवी टेकिंग इट्स प्लान, इट इज इंटीग्रेटेड प्लान विच द CDS टेक्स। सिंदूर में देखिए क्या हुआ। So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the prime minister. और इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है, पृष्ठभूमि है। So that is optimizing all available resources for best combat outcomes.
1: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेज में देख रहे हैं।
0: आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द CDS, यू हैव अपॉइंटेड अ CDS, बट अगर आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949, उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स। तो आपने गल्फ वॉर वन में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी। गल्फ वॉर टू में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16। आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब। सो दोज आर द स्टेप्स। टूडे वी आर इन वॉट वी कॉल कोऑर्डिनेटेड जॉइंटनेस। Then you have to go to integration, then cross pollination, then civil military fusion, which is whole of government. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ। एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, it has picked up an American called Omar Yagi, Nobel laureate in chemistry. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI department है for advanced materials, जिसमें PLA का 30% representation. तो academia, PLA and Nobel laureate kind of talent. That is civil military fusion. तो ये अभी एक लंबा सफर है। CDS पहला पड़ाव था, integration, theatrization दूसरा पड़ाव होगा, and that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, this is the beginning of that journey. और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का

0: अच्छा था
1: जी
0: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल। देखिए पहले क्या होता था कि अ सर्विस चीफ वुड गो टू द रक्षा मंत्री थ्रू द डिफेंस सेक्रेटरी, सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट द सर्व सोल्जर कुड गेट टू हिम ओनली थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक एयर। नाउ इट इज इक्वल्स डिफेंस सेक्रेटरी CDS बोथ, सो दैट द रक्षा मंत्री गेट्स द बेस्ट एडवाइस। इसका दैट इज द लॉजिक। और जैसे मैंने कहा इसके जो अब हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन की ओर अग्रसर है
1: जी,
0: और इसके मील पत्थर क्या होंगे, प्रतिभा, टैलेंट, मैंने उसका एक उदाहरण दिया आपका, इनोवेशन, नवाचार। टुडे यू कांट हैव आउटडेटेड प्रोसेसेस। देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, ड्रोन्स, AI, ये सब हकीकतें हैं, एंड अलोंग विद इनोवेशन डीरेगुलेशन। जब मैं आर्मी कमांडर था प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, ही सेड प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के सिलसिले में ही वाज टेलिंग अस दैट रिलीज द फोर्सेस ऑफ इनोवेशन एनर्जी एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर, नियमों का जाल। सो CDS DMA इज अ सिंबल, बट इसके पीछे गहरा सोच है।
1: सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी, आप कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ गई थी, तो इन टाइम इट वाज टेकन जो डिसीजन।
0: इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, इट इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री, सो देयर आर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हियर। दूसरा जो केंद्र बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस। देखिए हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs। अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ वॉर, उसमें आमूल परिवर्तन हुआ है। सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ, इट इज सच अ पावरफुल मिलिट्री, देयर इज नो मिलिट्री विच कैन प्रोजेक्ट पार टू ओशंस अवे। बट अभी एक रिपोर्ट निकली है वॉशिंगटन से कि व्हाई द US हैज नॉट डिलीवर्ड इन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी में उसका काम इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज इट वॉज स्लो टू लर्न द लेसन्स ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन से जो सीख थी ड्रोन्स, AI, वो नहीं कर पाए। तो देयर US नेवी, उसने ईरानियन नेवी के 160 शिप्स को ध्वस्त कर दिया, बट इट वॉज नॉट स्मॉल इनफ, एजाइल इनफ, ऑटोनमस इनफ टू ऑपरेट इन द स्ट्रेट।
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
0: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है, यू नीड द इनोवेशन एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन, प्रोसेस, प्रोसीजर, HAL इज प्रॉमिसिंग यू AMCA ओनली बाय 2030। अंग्रेजी में एक कहावत है दैट टुडे क्या हो रहा है, दैट multi-billion-dollar कैपेसिटीज विच आर डिलीवर्ड इन 10 years, they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks. Ukraine mein ye ho raha. So this is the reason why we have to move towards private sector and startups. Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke saath, to meri wo jo kya kehte hain professional career, vyavsayik jo zindagi hai, uska ant ho jata. We are not supposed to interact. Aaj aap dekhiye, jo hamare nausena adhyaksh hain Admiral Swaminathan, वो सार्वजनिक मंच से ही वाज टेलिंग द CEO स्टार्टअप्स यंगस्टर कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस। इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम, AI, गैलेक्साई, मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी, पनियन टर्बोफैन इंजन, थर्ड आई टेक, न्यू स्पेस, दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स।
1: रिलायंस को जो बढ़ावा मिला है,
0: बढ़ावा मिला है
1: जी
0: स्टार्टअप से, ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप। रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द 5th generation फाइटर बट द 6th generation फाइटर, तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते
0: आज
1: हैं, really.
0: जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, उसमें 42 ships का निर्माण हो रहा है, warships, but we have a long way to go because China has got 500 ships. But ये दो तीन चीजें जो हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है, स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ। और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं,
1: जी बिल्कुल,
0: हमारी जो सामरिक सोच है, जो नीति है, उसमें भी देखिए नए स्तंभ हैं। आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ है, और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है, अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे। एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज, वी हैव डन इट। हमने कैसे किया, चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा। आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया।

0: जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स, 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए। फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमने कहा पीओके नहीं, पीओके बाहर बालाकोट में आपको जाके मारा, और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर किया। आप 10 मई 2025 का स्मरण करें, पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड, इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड। हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट, हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे। पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूर खान 1.5 किलोमीटर था जीएचके से। पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड, और लुक एट द मैसेज दैट वी हैव गिवन।
1: सो मिस्टर नथानियल, कमिंग टू यू, आप क्या कहेंगे, ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए, और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज़्यादातर। वहाँ पे जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ, दूसरे इलाकों में। तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहाँ पे, खासकर अबुजमांड एरिया में। वहाँ पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था, और वापसी में जब आते थे तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करें। उससे क्या था कि काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह ख़त्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें ये ख़त्म करना ही है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और CAPF के, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP ये सब उसमें आते हैं, SSB भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने ख़त्म करना। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं, जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे, और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई हूँ। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज़ मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आने शुरू हो गए और उनको CRPF का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफ़ी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए। इन रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, CRPF के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू हुए, जिसको हम FOB बोलते हैं। उन FOB में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं, और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहाँ जम गए CRPF और बाकी फोर्सेस भी, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज़्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस था नक्सलाइट्स को ही पता है,
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहाँ पर पहुँच बनी
2: बिल्कुल जी। तो फोर्सेस जब वहाँ जम गए तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट से, तो उस भय को दूर कर दिया गया, और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है
1: जी।
2: और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफ़ी जोरों से किया गया, और उस वजह से उन लोगों के काफ़ी कैजुअल्टीज होने लग गए, और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेगुटा हिल्स, जो कि काफ़ी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था, और उसमें CRPF के महानिदेशक महोदय खुद भी थे, और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफ़ी

0: कठिन इलाका था और कोबरा बटालियंस भी वहाँ पे पहुँचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता तो उनको इवैक्यूएट किया जाए और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशन ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि DRG जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
1: जी,
0: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया था। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें। सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा।
1: सो रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो उसके वजह से कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से। और उसमें ये भी था कि जब इनके आपस में शादियां भी होती हैं नक्सलाइट्स जंगलों में रहते हैं लेकिन दे के नॉट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता था। लेकिन हर आदमी चाहता है भाई मेरे बच्चे भी हों और आगे मेरा संतान बढ़े। तो उसके वजह से कईयों ने सरेंडर किया तो उनका रिवर्स किया गया स्टेरिलाइजेशन और मकान दिए गए, फैमिली ढंग से रहने लग गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया स्किल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद उनको काम भी दिया गया। और कई जो उनमें बड़े अच्छे थे उनको जो कि ट्रेंड आदमी थे उनको स्टेट पुलिस में भी लिया गया। वहाँ पर बस्तर बटालियन है और छत्तीसगढ़ का अपना CAFS छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, उसके अलावा जैसे बताया DRG भी है, जो अच्छे ट्रेंड थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थन और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जो CRPF के पूर्व IG है। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे,
0: अब बसत भी जाने लगे, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुंच रहे हैं वहाँ पे और CRPF एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इधर कोई तकलीफ है CRPF पहुंच जाएंगे, वहाँ से खबर पहुंच जाएगी DM तक, कहीं पे भी पहुंचाना खबर। तो अब वो इंटरेक्शन क्योंकि CRPF पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन CRPF से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है
1: जी।
0: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं IG झारखंड था तो मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली। और कई ऑपरेशन, एक सरेंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहाँ पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुँचा रहे थे ताकि, और उस सरेंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया। नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती। लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, एक दो कैजुअल्टीज हुए लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ता है नाइट विजन डिवाइसेस। तो इन चीजों से हमें काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन ये काफी तादाद में जब वहाँ यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या MSMEs या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा

0: हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
1: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूँगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए। जैसे मैंने आपको बताया, HAL की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट HAL स्मार्टन्स अप, सो दैट आर PSUs आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, he does not bother about the American competitor, he is more bothered about the Chinese competitor. प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कम्पीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देख लें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन। पहली बात, रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर्स की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज AI इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है। आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन, ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाई अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है। प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं, और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर हैं, पामर लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग वॉट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर, वी नीड मोर रिफॉर्म। देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल। मैं आपको बताऊँ कैसे, हम जब बाहर जाते थे 2005-6 में, तो लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते थे साहब ये हमारी नीति नहीं, देट वॉज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे इफ द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores। अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है,
0: और 80 देशों में जा रहा है।
1: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ USA में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। 145 फर्म्स हैं, MSMEs वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस। आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग, और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है, इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस देके चीन को घेरा है। सो एक्सपोर्ट्स आर अ जियोपॉलिटिकल लीवर, दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे मेक सो मच सेंस, एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया वेयर वी हैव, इन फैक्ट we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
0: In fact, जो positive indigenization lists आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक items हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है एक्सपोर्ट्स।
1: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था। देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा था। मान लीजिए एक टैंक है, भाई हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे, हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था, तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे, और MSMEs बना सकते हैं। आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं। तो जब

0: आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे। पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेता थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिए। सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने DPI नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी, तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट। तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट पे खर्च था वो कम हुआ है, नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर वी परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट।
1: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़े हैं।
0: देखिए बुनियादी सवाल क्या था, IG साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेस डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेस डेवलपमेंट, रॉन्ग। इट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, साथ चलना है। सो दीप जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी, वी हैव टर्न्ड इट अराउंड, वी ग्रो अप इन साइलोज, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, PSUs प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अपनी दुनिया में। अरे भाई एकेडमिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, प्योर साइंसेस नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती, एवरीबडी हैज टू इंटीग्रेट। सो देयर इज अ लार्जर कंसेप्चुअल चेंज ऑल्सो व्हिच इज ड्राइविंग ऑल दीज आई वुड से मेगा रिफॉर्म्स।
2: ये जो कंसेप्चुअल चेंज की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और रिफ्लेक्शन FTI जो डिफेंस में FTI को लिबरलाइज किया गया है 74% तक वाया ऑटोमेटिक रूट एंड 100% वाया गवर्नमेंट, तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है।
0: बिल्कुल, तो आप एक छोटी सी कहानी सुनें। आई वाज ग्रोइंग अप 1980s, आपको भी याद होगा, यू सेड स्पेस इज एन एक्सक्लूसिव थिंग, फ्यू कंट्रीज टू इट, कंट्रीज आई एम एम्फसाइजिंग, सो USSR, USA, इंडिया वाज आल्सो, बट हम विस्पर्स में बात करें। हमारे सिलसिले में क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी, only government can do it, only DRDO because it is exalted, lofty. Aur us daire ke andar kya hua ki in this PSU complex a lot of, shall I say, slots slipped in, inefficiencies, aur usko protect karne ke liye humne kaha nahi private sector nahi aa sakta. Dheere dheere kya hua, bharat mein hi nahi vaishvik sthar pe private sector proved that it had efficiencies of its own. To FDI mein bhi yahi tha pehle, aur isko humne pehle kaise kaha, investment प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता, हमें क्यों नहीं हो सकता, क्षमता, प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए। सो उस तरह से ये जो FTI धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, PSU स्ट्रक्चर में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए हमको PSUs या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग, आप PSU हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग। And if you look at the future, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी, यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन। सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा, दे हैव टू बिकम AI कंपनीज,
2: बिकॉज द डिलीवरी इज डिजिटल। स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कंपटीशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में।
0: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स, बिकॉज दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक। ये जो चीजें आजकल, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है, आईजी साहब पता नहीं क्या कहें, कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ, एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज लाइक द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, सिविल स्पेस में भी है। आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया, मैंने आपको इनाम गिनाए थे, दीज आर जस्ट IT इंजीनियर्स, किसी ने गैराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, बट दे हैव डिलीवर्ड, एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस, इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है। सो आई विल गो बैक टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. Humne jo itne rules, niyam, shiyam bana ke rakhe the, that was throttling national security. Usko azadi mili hai abhi.
2: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में। मिस्टर थेटेल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए।
1: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट, और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के जहाँ पे अभी थोड़ा

का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहां पहुंच गए हैं, उसी तरह कोबरा बटालियन अब जे एंड के में ही पहुंच गए हैं। सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर सीआरपीएफ बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दो एरिया। अब वहां पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है। हालांकि कुछ है, एक तो उल्फा है आसाम में जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है, वो ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता। लेकिन जे

0: 1989 से पहले तो और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे।
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला। हम आकाशवाणी अलवर के सरस्का चैनल से बोल रहे हैं FM 103.1 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे। संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे।

अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान

ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती हैं। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती हैं, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे। जीपी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राष्ट्रीय की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं।

0: पर जी शाम का और प्रस्तुत करता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभिनेत्री राष्ट्रीय के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM 103.1 MHz पर इस समय 10 बजे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी,
3: विशाल जी सबसे पहले तो बधाई दीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश, हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
2: धन्यवाद।
3: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
2: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कह सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, जिसमें श्री नीलकंठ बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
3: जी।
2: इसके अलावा वो मतलब हर तरह के चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी, इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से

0: उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहाँ से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
1: जी,
0: होगा। तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए, तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा। और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था, पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी, क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीम करोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
1: तो नीम करोली बाबा को एक भक्ति भाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
0: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है, क्योंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
1: जी।
0: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 ईयर्स और 20 ईयर्स कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है। और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वॉज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 ईयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, तो इसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनके उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, ऊपर वाली कृपा हो गई, तो इस तरह से। तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया है।
1: जी, ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें जरूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए। और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहाँ से आपके मन में ये बदलाव आया?
0: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैं पढ़ाई भी वहीं से की है, जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कोंच, वहाँ पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहाँ से लखनऊ आ गए। और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो अपनी अपनी तहजीब है
1: जी।
0: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया, तो पहले तो भाषा सुधरी वहाँ जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है, तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहां पे प्रताप नारायण मिश्र जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट करके सामने थी, छनूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे, तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में।
1: अच्छा।
0: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया, एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था वो सडनली स्फुटित हो गया, और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था, तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहां की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था, तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं,

0: और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था, और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, अमरनाथ बलि नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था
1: जी।
0: तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊँ, तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था,
1: जी,
0: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
1: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचरिक
0: जी, और शहर से बाहर भी है, तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था। तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस, बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 एकड़ की जो कॉलेज कैंपस था वो वही दुनिया थी हमारी
1: जी।
0: तो उसके अंदर की जो सो खैर कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परस्यूट थी उनको फॉलो भी किया वहां पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ही है कि आप किसी चीज के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था
1: जी जी।
0: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज ए वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इंप्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
1: जी।
0: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहां से शुरू हुई जी।
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनना।
0: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ
1: जी जी।
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूँ, मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे
1: जी जी।
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब लिटरली उनकी वो जो CD थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूँ। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूँ अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूँ, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू specifically ask me any of the song, I love all the songs, I can sing any one of it, I won't mind.
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए तो मैं पहले हृदय में जिनके सीताराम ही गाते
1: जी, एक लाइन सुना दीजिए।
0: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं। हृदय में जिनके सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के। तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया, कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, से बहुत सारे लोग कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं, पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयूज, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं
0: जी,
1: तो एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
0: जी जी जी।
1: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पार्ट क्यों है, ओके ओके, तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या, तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चले गए, और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
0: अभी सुनाइए
1: हनुमान चालीसा चैट,
0: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है, तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहाँ पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
1: जी, जी।
0: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
1: नहीं
0: तो
1: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, पर मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री नीपकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। तो आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है, पर वो सरेंडर

0: इनको ही करते हैं,
1: इसको
0: इसको ही
1: करो।
0: करते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है, और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। द अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुमरे पासा, सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुमरे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसों सुरभूप, हृदय भसों सुरभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसे लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धियां अवनीति दाता, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं, और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां, जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई है, क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन अवधिदाता असबर दिन ऐसा वर सीता दिन दिन जानकी माता
1: जी।
0: तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बंधन तुम रोज जसगावे अस्के श्रीपति कंठ लगावे, जब लाय सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बंधन तुम रोज जसगावे, इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी है
1: जी,
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। यहाँ तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहां पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000-5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट ही इज पॉपुलर, कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे, बराक ओबामा,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, तो डर से निजात पाने के लिए कहा जाता है, हम सब भी वो करते हैं, डर लगता था,
0: डर लगता तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू
1: करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अंधेरे कमरे में पार करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है।
0: वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
1: जी जी,
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे जी,
1: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते हैं?
0: मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ
1: जी जी, प्लीज सुनाइए
0: जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय सिया राम जय सिया राम, हाथ बज्र और

0: ರುದ್ರ ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಿ ಬನಾರಿ ಅಂಜನಿ ಸೂತ ರಾಮ ದೂತ ಪ್ರವಂಜನಾ.
1: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे. बट
2: गाने की बात, चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर, बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन के गलियारों में. वहां आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया. तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे, या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
1: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते. फिर लगा के, फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए. तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
2: डॉक्टर
1: इंजीनियर आईएएस पीसीएस. तो मेरा थोड़ा पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज. तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग. उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था. 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था. तो लखनऊ आके वो परस्यूट्स डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी. हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली मुझे. एंड दैट टुक मी, वरना बचपन चंबल में बीता तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहां पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी टिशू की, एक और टिशू के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी. वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है, देखा है. से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया.
2: अच्छा.
1: और वो तेज सिंह टाक जी वहां पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन. तो 4-5 साल वहां पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए. क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो प्रैक्टिसिंग इन वर्किंग ऑन इट, एंड आई डू इट प्राइमरली फॉर माई सेल्फ. तो मतलब वो कंप्लीटली मेरे उसको कमर्शलाइज करता नहीं हूँ, म्यूजिक को कुछ भी कमर्शलाइज नहीं करता.

0: सो इट्स अ वेरी सोल सेटिस्फाइंग सॉर्ट ऑफ एन इवेंट फॉर मी एवरी डे. लेकिन नेक फॉर म्यूजिक, फाइंडिंग ग्रेट म्यूजिक, रिकॉग्नाइजिंग ग्रेट टैलेंट, म्यूजिकल टैलेंट इज प्रॉब्ली वन आर्ट आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ मतलब मल्टीपल ईयर्स, डेकेड्स साल से. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया. उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए. तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी, जी,
0: था. तो
1: हाँ.
0: बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना का फोन नंबर भी.
0: हाँ जी जी जी. तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया. बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है. एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है. एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है. विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर. तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेरे मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री, के लिप सिंकिंग करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का. थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं. अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी. फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू गए 4th वीक से,
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया.
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: रील बनने लगे, हजारों की संख्या, मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया. अब जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है.
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को
0: जी. मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ. जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि सप्त ऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो, शिव शंभो.

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: अरे वाह क्या बात
1: है, उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज है, उनके भी म्यूजिकल तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़
2: तो ये अभी की फिल्म्स हैं, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म्स बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम्स उन्होंने चूज किए, तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिखा।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतने ही उनके लिए हृदय में उतने ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी,
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के, तो ये कैसे मिले आपको?

0: कहाँ से? बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
1: हाँ, तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूंकि, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
0: जी,
1: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था।
0: अच्छा।
1: तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ट्रेन में गाता है और उसका
0: नेत्रहीन है
1: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते हुए किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लड़का गाता है। अच्छा, मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहाँ से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसका सेटल किया कि कब जा रहा है, वो क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे। तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ उसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पे कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें
0: जी जी,
1: सागर में नैया डार दे कौन, उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की वो नाव बनाई काहे की पतवार,
0: जी जी बिल्कुल याद है,
1: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दे। सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दे क्या, और हनुमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां में बैठन हारी
0: जी,
1: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवन हार कौन है, हनुमत खेवन हार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे आप ही खेवन हार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंप्लीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स थी, पता नहीं अभी देखेंगे तो लगता है मिलियन हो गई या 5 मिलियन के हो गए।
0: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
1: गाने,
0: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
1: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
0: दिख जाता है
1: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एक दिन तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
0: क्या बात है,
1: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो शट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: मोबाइल में है, जबकि
1: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, जो कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है, वो हाथ से जब आप लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस। एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
1: होते रहते हैं।
0: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है?
1: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
0: फेवरेट,
1: प्रेम पुजारी का गाना है,
0: साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार, तो सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था, और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं
1: जी।
0: बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहां पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रॉन्ग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो तो ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा खोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं, और फिर वो चली जाती हैं वहां से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के लिए नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जो मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो है ना कुंच ऋषि की धरती थी वो, मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहां से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीजें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रिज की लठमार और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है
0: जी, जी।
1: तो वो लहजा जो है ना मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर। इनफैक्ट वो नत्था, वो यूज्ड टू स्पीक उसमें पीपली लाइफ में।

0: और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए ही बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हासा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर, तो ये सारे गाने जो है ना एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
1: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं। हर हर

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
1: ना, बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय 11 बजे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बता

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

आनंद बख्शी की लिखी ये कव्वाली आप सुन रहे थे गुलाम मुस्तफा फिल्म से, इकबाल साबरी और अफजल साबरी के साथ साथियों की आवाजें थीं।

0: तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: पंकज उदास को अभी आपने सुना, तर्ज थी पंकज उदास की।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व।

0: आई लव फाल्गुनी, इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। फाल्गुनी पाठक की आवाज थी, महबूब के बोल ललित का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

शमीम जयपुरी की ये रचना आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज में। ये थी पूर्वी दादरा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

0: फिल्म निकाह की ये गजल आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, हसन कमाल के बोल थे, रवि का संगीत था।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अमजद नदीम की तर्ज थी, शब्बीर अहमद का लिखा ये गीत आपने सुना, रेखा भारद्वाज की आवाज में, फिल्म थी जिंदगी 50-50।

फिल्म लम्हे में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। श्रोताओ, रंग तरंग ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश

की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें याद करते हुए आपको सुनवाते हैं उन पर ही फिल्माया गया ये गीत।

0: फिल्म वनवास से ये रामधुन आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाजों में, विजय प्रकाश और महालक्ष्मी अय्यर की भी साथ में आवाजें आपने सुनी। सईद कादरी के बोल थे, मिथुन की तर्ज थी। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। अपनी सहज और बेबाक अदायगी से उन्होंने हम सभी का दिल जीता। हिंदी और मराठी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार रहे नाना पाटेकर के लिए जाने माने फिल्म निर्देशक पार्थो घोष, जिन्होंने फिल्म 100 डेज, अग्निसाक्षी, तीसरा कौन, गुलाम मुस्तफा जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं नाना पाटेकर के लिए।
1: नाना पाटेकर साथ कैसा आपका संबंध रहा?
2: नाना को साथ हमारे बहुत ही अपने तरीके से एक दोस्ती हो गए।
1: नहीं, कहते हैं कि उनको समझना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है।
2: नहीं, वो क्या है, वो एक बार उसको जब दोस्ती हो जाते फिर उसको साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। फिर वो कोई चीज में कुछ बात ही नहीं करते और उसको एक बार विश्वास हो जाते हैं। हाँ। जो सामने वाले वो अपने

0: आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
7: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
6: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
7: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
6: पर रेरा तो शहरों में।
7: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
6: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
8: शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: और बरसात का टाइम, जस्ट गर्मी खत्म हुआ मुंबई का, हाँ। पहला बरसात जैसे हुआ उस समय, पता नहीं बारिश से बहुत लगाव है।
3: अच्छा,
2: मतलब बरसात होगा तो मैं भीगूंगा जरूर।
3: क्या बात?
2: अपने छत पे हो, हाँ। या रास्ते पे हो, हाँ। या कहीं भी हो, हाँ। मुझे भीगना है। अच्छा। मुझे छतरी नहीं चाहिए, हाँ। तो मुझे बहुत भीगने का शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाहर आ गए, भीगा पानी में एकदम, पर घनघोर बरसात। तो भाई बोला अभी क्या करें? बोला अभी चलेंगे ना जगह देखने। बोला अभी जगह देखने कहाँ जाएंगे अभी? बोला अभी तुझे बारिश में तो प्रॉब्लम। बोला मुझे एंजॉय हो रहा है यार, क्या खूबसूरत बारिश था, मजा आ गया। फिर हमने फिर बोट पे चढ़ा। स्पीड बोट और दोस्त का।
3: अच्छा।
2: तो फिर स्पीड बोट अभी नदी का उल्टा तरफ, नदी का तरफ, मतलब जहां से नदी शुरू हुआ उस तरफ
3: चल दिया।
2: चारों तरफ से पहाड़,
3: हाँ।
2: और नदी और बारिश,
3: हाँ।
2: और कुछ नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है,
3: हाँ।
2: तो मैं बोला कितने दूर जाना है? बोले 10 किलोमीटर। बोले नदी में 10 किलोमीटर जाना है,
3: हाँ।
2: उसका बाद तेरा वो जगह आएगा जहां तू फार्म हाउस बनाएगा। अल्टीमेटली 10 किलोमीटर अंदर चले गए नदी में,
3: हाँ।
2: और दोनों बाजू कुछ नहीं, मतलब एक आदमी नहीं, एक घर नहीं, कुछ नहीं। सडनली एक जगह पे आके बोले बोट रुका
3: दिया, हाँ।
2: और बोले ये जो पहाड़ है नाना,
3: हाँ।
2: ये तेरे, इसके लिए मैं बोल रहा था, तुझे तुझे पसंद है।
3: अच्छा।
2: मैं बोला नाना ये क्या है पहाड़? ये तो पहाड़ है, यहाँ पर तू रहेगा, आदमी आएगा कैसे?
3: यहाँ फार्म हाउस कैसे बनाएगा?
2: नहीं बनाएगा, फिर बनाएगा तो चल कुछ भी करके तू बनाएगा, पर यहाँ तो आदमी क्या कोई, मतलब मुझे बर्ड्स भी नजर नहीं आ रहे, रहेगा कैसे तू? बोलते मतलब मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब चाहिए ही नहीं। बोले डिस्टर्ब नहीं चाहिए, बात अलग है, कम से कम दुनिया से लिंक तो होना चाहिए, ये तो दुनिया का बाहर का जगह। मैं तो तेरे साथ नहीं हूँ भाई, ये जगह तुझे मैं नहीं बोलूंगा, तुझे ये जगह। तो ये है नाना का कहना।
1: श्रोताओं, जाने माने निर्देशक पार्थ घोष नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रहे थे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई। बस एक गीत आपको सुनवाएंगे और उसके बाद सुनवाएंगे पद्म भूषण सई परांजपे, यानी निर्देशिका सई परांजपे अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में अपनी बातें कह रही हैं। ये थोड़ी देर में बस आपको सुनवाते हैं।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पत्थर के सनम। श्रोताओं, नाना पाटेकर को लेकर जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सई परांजपे, जिन्होंने चश्मे बद्दूर और स्पर्श जैसी फिल्मों को बनाया है, आप जानते ही हैं क्या कह रही हैं नाना पाटेकर के लिए, आइए सुनते हैं।
1: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन

0: इन हाँ नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है
1: जी जी
0: हाँ बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही आई वांट सम अ गुड एक्टर इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन ये वो सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल वो आया गया ऐसा ही रोल था कुछ था नहीं उसमें लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया खैर लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन उसका एक
1: जुनून
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि वो ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके तो मैंने नाना को बुलाया नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है
0: हाँ और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही उसने कहा तुम करो तुम्हारा मेरी तरफ मत देखो और फिर पढ़ा उसने बंद किया फर्स्ट क्लास बना कर्णारोपण हाँ मैं करूंगा तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं मैं वसंत ऐसे क्या वसंत कैसे तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ तो मैं चुप रही फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई
2: ये थी जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सही परांजपे जो बातें कर रही थी नाना पाटेकर के लिए आपको ये रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने सुनवाई विविध भारती के संग्रहालय से जिसमें ये दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुनी फिल्म निर्देशक पार्थ घोष और पद्म भूषण सही परांजपे की बातें थी विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल

0: फिल्म महबूबा का दो गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: इश्क पर जोर नहीं, सुन में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चितचोर फिल्म का गीत आपने सुना येसुदास की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आदमी का नगमा, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बनी के बोल, नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर का गाया आदमी फिल्म का गीत आपने सुना, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। यादों की महफिल ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न हुआ। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूर संचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास

0: को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा जारी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार वस्तु और सेवा कर GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन सुधारों का उद्देश्य GST व्यवस्था में मौजूदा कई प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना और खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम करना है। पंचायती राज चुनाव 2026 में अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है। जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,50,000 और सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित है। लाउडस्पीकर और प्रचार वाहनों के इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। झुंझुनू के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव EVM से जबकि सरपंच और वार्ड बेंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। फर्जी मतदान रोकने के लिए संदिग्ध मतदाताओं की जाँच की जा रही है। बिना परिचय पत्र के मतदान की अनुमति नहीं होगी। सरपंच और वार्ड पंच की मतगणना मतदान के दिन ही की जाएगी जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य के लिए मतों की गणना निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज टोंक जिले का दौरा किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में ईसरदा बांध परियोजना सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद मुख्य सचिव ने टोंक साइबर थाने का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद वे कोटा के लिए रवाना हो गए। डीग पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जिले भर में साइबर चौपाल अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव-गांव पहुंचकर युवाओं और ग्रामीणों से संवाद कर रही है। चौपालों में साइबर अपराध से बचाव और इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि अभियान के तहत जागरूकता के साथ साथ साइबर अपराधियों पर निगरानी और कार्रवाई भी की जा रही है। अभियान में युवाओं, बुजुर्गों और आमजन की भागीदारी हो रही है। सवाई माधोपुर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत आज वॉक फॉर मेंटल हेल्थ मैराथन का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समीक्षा गौतम ने दशहरा मैदान से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। ये मैराथन हाउसिंग बोर्ड पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें चिकित्सकों, नर्सिंग विद्यार्थियों, विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिकों, अधिकार मित्रों और लायंस क्लब के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नर्सिंग विद्यार्थियों ने नारों और संदेशों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, तनाव और मानसिक समस्याओं में समय पर चिकित्सकीय सहायता लेने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर को याद किया है। आप अपनी बातें, अपने उद्गार लिख सकते हैं श्रोताओं। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे जरूर। और अंकुश फिल्म का ये गीत हमने श्रद्धांजलि स्वरूप सुनवाया अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और शेखर की आवाजें थी। अभिलाष का लिखा ये गीत था, कुलदीप सिंह की तर्ज थी। और हमारा आज का जो शेष कार्यक्रम है, फेसबुक पर जो दी गई इबारत है उसी के अनुसार है। तो हमारी एक श्रोता ने लिखा है, गुलाबी ठंड इसलिए खास है क्योंकि इसमें मौसम केवल बदला नहीं करता, मन भी बदलने लगता है। ठंडी हवाएं भीतर की उदासी को सहलाती हैं, धूप स्मृतियों को गर्माहट देती है, धरती ने लाल चुनरी ओढ़ी है, आसमान ने प्रेम का संदेश संभाल रखा है और पूरी प्रकृति किसी अनकही मोहब्बत की खूबसूरत गवाह बनकर हमारे सामने खड़ी है। ये हमारी एक श्रोता लिखती हैं। वैसे हरुद नाम का एक शब्द हमने अपनी इबारत में इस्तेमाल किया है श्रोताओं, ये शब्द किस बाबत हमने लिखा है, अगर ये आप बताएं तो क्या ही अच्छा है। वैसे ये शब्द कश्मीर की वादियों से वाबस्ता है, ये आपको बताना है। और आपके शहर में मौसम कैसा है अब, ये आप बताइए हमें। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं, ठंड की चादर धीरे धीरे दस्तक दे रही है, खुशनुमा वातावरण चारों ओर फैल रहा है, सुबह फूलों में ओस की बूंदे, फिजाओं की रुमानियत, गुलाबी ठंड रात में नहाई चांदनी सुरख वादियों में मोहब्बत का नजराना देखते ही बनती है, हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। और गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है, अश्विन महीना आ रहा है, बल्कि आ चुका है श्रोताओ, और गुलाबी ठंड की पहली तरल मखमली आहट सुनाई दे रही है, सुबह की ताजी हवा में अब एक हल्की सिहरन है, उषा काल में सूरज की गुनगुनी धूप घास की पत्तियों पर मोती जैसी चमकती ऊस की नन्ही बूंदे मन को मोहित कर रही है। यही हल्की ठंड अपने साथ नवरात्रि, दशहरा और काजरी पूर्णिमा और दीपावली, इन मनभावन त्योहारों की खुशबू और गर्माहट को लेकर आ रही है। जी हाँ, इंतजार ही तो रहता है और इंतजार जब मुकम्मल हो जाए तो क्या ही बात है। वैसे गुलाबी शब्द से जो गीत आपको याद आ रहे हैं वो आप हमें लिख सकते हैं और अपने शहर का मौसम जरूर बताइए।

श्रोताओं, तो इस गीत के गीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। वैसे इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो इसमें बहुत ही अलग और कम चर्चित एक कलाकार थे, तो उनके बारे में भी अगर, यानी उनका नाम अगर आप लिखें तो क्या ही बात है। आबरू फिल्म का गीत हमने आपको सुनाया, सोनी उमी की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखा है कि हमारे सिने जगत को नाना पाटेकर जैसे कलाकार के जाने से बहुत क्षति हुई है, हमने एक शानदार कलाकार खो दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर जी का देश प्रेम फिल्मों में झलकता है, देश से बहुत प्यार था उन्हें, सामाजिक मुद्दों को बार बार फिल्मों के जरिए उठाते थे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नाना की हर फिल्म मैंने देखी है, उनके अभिनय की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। आज मुझे फिल्म प्रहार का सीटी वाला सीन याद आ रहा है, सीटी बजवा कर उन्होंने उस फिर एक मतलब इन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं फिल्म की। एक श्रोता हमारे आज की जो इबारत है, टेक्स्ट है, उस पर लिखते हैं कि हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इस गीत को इन्होंने याद किया है। ठंडी हवाएं लहरा के आए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखें। जी हाँ, गुलाबी शब्द तो ऐसा है श्रोताओं, इससे बड़े

0: इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था श्रोताओ आबरू फिल्म का, वो दीपक कुमार पर फिल्माया गया गीत था और जीएल रावल के बोल थे सोनी कोमी का संगीत था। वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना, एस एन त्रिपाठी की तर्ज, और एक श्रोता के उद्गार हैं कि नाना पाटेकर जैसे कलाकार सदियों में आते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि इन्होंने दी है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह की हल्की ठंडक, फिजाओं में रोमानियत और रंग बिरंगे फूलों पर ओस की बूंदें शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा कर देती हैं। इस मौसम में न बहुत ज्यादा गर्मी और न कपकपाने वाली सर्दी होती है, कांपने वाली सर्दी मन एक अजीब सी शांति और अपनों के बीच आने का एहसास जगाता है। फूलों पर गिरी ओस की बूंदे मानो प्रकृति ने मोतियों के हार से सजाया हो, इसलिए ये नजारा आंखों और दिल दोनों को सुकून देता है। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग सा सुकून होता है श्रोताओ, वहां के बारे में आप जरूर लिखिए कि वहां की रातें अगर आपने देखी है इस गुलाबी ठंड की, वैसे ये तो पूरा शहर, पूरा स्टेट ही कहें तो गुलाबी गुलाबी सा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों में नाना पाटेकर जी का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और उनकी फिल्मों के बारे में लिखा है, क्रांतिवीर, तिरंगा, परिंदा, शक्ति, अग्नि साक्षी जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से जान डाल दी। नाना जी की निर्देशित फिल्म प्रहार मुझे उनकी सबसे प्यारी फिल्म लगती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें सबसे अलग करती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हारूद के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, ये समय खूबसूरत मौसम सितंबर के अंत तक से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। जी हाँ, और जो अक्टूबर का महीना है श्रोताओ, ये खास कश्मीर जाने के लिए ये मौसम जो होता है, ये समय जो होता है बड़ा ही मुफीद होता है। इस समय अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि चिनार के पत्ते किस तरह से रंग बदलते हैं। और इसी को लेकर हमने इबारत की जो अंतिम लाइन थी वो लिखी थी, क्योंकि लाल सुर्ख रंग सी चादर कहें या ओढ़नी सी कहें कश्मीर में बिछी हुई नजर आती है। एक और श्रोता लिखती है कि कश्मीर में हारूद का अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, और कश्मीरी संस्कृति, जीवन शैली और आर्थिकी में इस मौसम का एक बेहद खास स्थान है। इसके साथ ही कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हारूद नाम की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी है। तो एक और श्रोता लिखती है कि कल शाम की बारिश है और भोर की बारिश ने हमारे शहर को बेहद खुशनुमा बना दिया है, हवाओं में ठंडक आ गई है और अभी धूप का टुकड़ा हमारे छत और बालकनी पर भी आकर सिमट गया है, जैसे कह रहा हूँ ठंड आया है, मैं तो भी साथ में हूँ। जी हाँ, जहाँ ठंड देर से पड़ी है श्रोता, वहाँ पर तो ये बारिश जो होती है वो बेमौसम आती है, जिससे कि ठंडक को ला सके। फिलहाल गुलाबी ठंड है।
1: ये चांद

कश्मीर की अगर बात करें तो श्रोताओं, तारीफ कितनी भी करें, शब्द इस प्रदेश के लिए कम ही पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे एसएच बिहारी की रचना, संगीतकार आप अगर बता दें तो क्या बात है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी डॉल्फिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है और इसके बारे में पूछा, क्या सही है, इसको जानने का इंतजार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर साहब चले गए और उन्हें हम याद करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि अपनी दमदार आवाज और अभिनय से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को हम उनके श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की ये इबारत केवल मौसम के बदलाव का वर्णन नहीं करती बल्कि प्रकृति के मानवीय भावनाओं के बीच गहरे रिश्ते का एक सुकुमल दस्तावेज है। गुलाबी ठंड की आहट को हवाओं की सेहरन और फिजाओं की रुमानियत के साथ पिरोना बेहद असरदार है। ये ठंड सिर्फ तापमान का गिरना नहीं बल्कि भावनाओं के जागने का प्रतीक बन जाती है। ये तो बताइए श्रोताओं कि गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, यानी आपको सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल, गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, और दूसरा सवाल एक और है कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल खूब हमारे किस त्योहार में किया जाता है, और एक जगह की तो पगड़ी भी गुलाबी है। तो आप बताएं, ये सारे सवाल आपके लिए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो इस समय शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में अच्छी धूप है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है, फिजाओं में रंग से घुलने को आ गई, वो सुहाना मौसम, सुबह की धूप और घास पर ओस की बूंदे मोती बिखरने लगे, ऐसे में विविध भारती का साथ, वाह क्या बात है। जी हाँ, विविध भारती है हमेशा से आपकी साथी। तो ये गीत आप सुनिए और जो हमने सवाल आपसे पूछा वो भी बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ रहे हैं श्रोताओं, उनको अगर आप बता सकें उनके बारे में तो क्या ही बात है।

0: संभालो मुझको ओ मेरे यार, संभलना मुश्किल हो गया।
1: नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया द ट्रेन फिल्म का गीत आपने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने तमाम अपनी बातें हमसे साझा की हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी सुबह सुबह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रात से ही ओस गिरना शुरू हो जाती है, सुबह तो ठंड लगती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इस समय कश्मीर में फसलों और खासकर केसर की कटाई का मौसम ये माना जाता है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और एक हमारे श्रोता नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखते हैं कि इनकी फिल्म नट सम्राट देखी है, क्या भूमिका थी उस फिल्म में इनकी, और अभी तक वो आखिरी दृश्य याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर जी को याद किया है। वहीं हमारी एक श्रोता लिखती हैं कुछ गीतों के बारे में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कहां सिलाई हो जाने मन के ताबी चेहरा, और तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है, लिखा है इसके बारे में। एक और श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम की गुलाबी ठंड, वादियों की हवाएं और चांदनी रातें अक्सर दिल में खास यादों का चिराग जला जाती हैं। इस खूबसूरत माहौल में किसी को याद करना और खो जाना स्वाभाविक। हवाओं में घुली है ये गुलाबी सी ठंड, चांदनी रात में बहकी है ये वादियां मलंग, ऐसे में दिल को कोई याद ना आए तो कैसे हो सकता है। और भी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैं छत पर जाती हूं तो एक दो दिन से हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है मौसम करवटें ले रहा है और जो त्यौहार हैं वो भी आने वाले हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और जी हाँ, नाना पाटेकर की यादें तो कुछ ऐसी ही हैं। श्रोताओं, आज की इबारत जो गुलाबी ठंड को लिए हुए है, इसी बाबत हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जयपुर है वो तो पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम आता है रात 8 बजे, इस इमारत की गुलाबी रंग को लिए क्या खासियत है ये आप हमें बताएं, और हम किस इमारत की बात कर रहे हैं।

देव मुखर्जी और तनुजा पर फिल्माया गया एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने इस गीत की बातें भी बिल्कुल ठीक लिखी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप जयपुर की जिस इमारत की बात कर रही हैं जो विविध भारती पर रात 8 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है उसका नाम हवा महल है। जी हाँ, और ये इमारत जो है वो गुलाबी पत्थरों की सुंदर सी जो एक तामीर है देखते ही बनती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है और फिजाओं में कुछ रंग का एहसास होता है, घास पर भी ओस की बूंदे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी रंग लाल और सफेद रंग को आपस में मिलाने से बनता है, क्या ही बात है। एक और श्रोता लिखती है कि बेमिसाल अभिनेता नाना पाटेकर का जाना आंखों को नम कर गया है, ईश्वर महान अभिनेता को अपनी शरण में ले, दिल से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र नमन। एक और श्रोता लिखते हैं कि इसी रंग के बारे में, गुलाबी रंग में, लेकिन तितली का जो पंख पिंक होता है यानी गुलाबी होता है उस बारे में आपने लिखा नहीं, और हमने आपसे पूछा था कि गुलाबी चूड़ियों का सबसे बड़ा बाजार भारत में कहाँ है, वो भी आप जरूर बताएं अगर आप बता सकते हैं तो। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ कोलकाता में अषाढ़ महीने से बारिश लगी हुई है जो अभी अश्विन मास तक भी हो रही है, कल भी बरसात हुई थोड़ी, अभी थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडी सी हवा शुरू हो गई है, हवा में पूजा का पूरा असर, जगह जगह पंडाल बनने की तैयारी हो रही है, कुल मिलाकर बहुत ही खुशनुमा वातावरण है हमारे कोलकाता में। जी हाँ, और इस समय लोग जो है ना बड़ी अलग अलग जगहों पर सैर के लिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये मौसम बड़ा ही खुशगवार होता है। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है तो वो कौन सा शहर है जहां आप जाना चाहते हैं या जहां जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी

जो है वो ठंड शुरू हो गई है। और इस तरह से कई हमारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो तेज धूप निकली है लेकिन रात को ठंड हो जाती है। कलाकार और फिल्म आपको पहचाननी है।

बड़ा ही खूबसूरत था लंदन पैलेस का ये सीन। श्रोताओं, नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। माला सिन्हा और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था, आनंद बख्शी की रचना थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब गार्डन में पैरों पर छोटी छोटी बूंद बिखरी रहती है, यानी ओस की बूंदों की ये बात कर रही है, तो उनको छूकर आंखों से लगाने में बहुत सुखद एहसास होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ओस की बूंदें जो है उन पर चलते हैं या फिर उन्हें आंखों में लगाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे ठंडियों की सुबह सवेरे 5 बजे जो गुलाबी ठंड पड़ती है मेरे मन को बहुत लुभाती है, मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। सुबह सुबह ठंड में टहलने टहलना बहुत पसंद है जब हल्की हल्की ठंड होती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं हाल ही में राजस्थान के एक साल में बयाना बंसी पहाड़पुर हिंटोन सिटी रहकर मंदिर के लिए पिंक पत्थरों को नक्काशी बनवा कर ही आया हूँ, तो शायद इन्होंने इस पर काम भी किया हुआ है, तो उस बारे में ये लिखते हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं श्रोताओं जो राजस्थान की वादियों में रहते हैं और जो गुलाबी बलुआ पत्थर होते हैं उनके काम यानी ऐतिहासिक इमारतें खूबसूरत जगहों का निर्माण करते हैं आज भी, तो ऐसे हमारे कोई श्रोता हैं तो अपनी बातें वो भी लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गुलाबी और पीला रंग अक्सर पूजा पाठ और शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने गुलाबी रंग की बात करी थी श्रोताओं, होली में बड़ा इस्तेमाल होता है ये रंग, इसका जवाब ये था। और होली में तो बहुत सारे रंग इस्तेमाल होते हैं लेकिन गुलाबी रंग खास नजर आता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जी हाँ, मैंने राजस्थान की गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड में बहुत भ्रमण किया है। राजस्थान का ही वाशिंदा हूँ, बेशक दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के गुलाबी किले भी देखने लायक, विशेषकर अक्टूबर से फरवरी तक। और अब आपको ये कलाकार पहचानने हैं।

एक पक्षी है श्रोता जो गुलाबी रंग के लिए मशहूर है, फ्लेमिंगो इसका नाम है। और हमने आपसे पूछा था कि जो राजस्थान है उसमें गुलाबी जो इमारतें हैं उनकी खासियत क्या है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि गुलाबी रंग के पत्थर से ये बनी होती हैं। और एक सवाल हमने आपसे अभी भी पूछा है जो आपको बताना है। और एक पेड़ है जिसमें गुलंग के फूल जो है वो खूबसूरती से खिले होते हैं, चेरी ब्लॉसम ये है। और अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अब जो ठंड का मौसम है इसमें बड़ा ही प्यारा सा एक अलग शबाब लिए हुए अमरूद आता है जो गुलाबी रंग की भी अहमियत को लिए हुए होता है, और ये कहाँ का है, किस बाग का है, अगर आप जानते हैं तो जरूर बताएं।

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई
1: एक फूल दो माली। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे साधना और संजय खान पर फिल्माया गया। इसके पहले शिकारी का गीत हमने आपको सुनवाया। अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया वो गीत था

होता, एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि बेईमान ही होता है, मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंतज़ार भी बना रहता है। हमको प्रकृति को प्यार करने वाले को मौसम का रूठना फिर वापस आना ये भी जीवन की एक प्रक्रिया होती है। अब आप एक सवाल और बता दें, एक तो हमने आपसे एक फल का सवाल पूछा है कि हरे और गुलाबी रंग का ये जो फल होता है यानी अमरूद भी शायद हमने आपको बताया है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, और एक गुलाबी रंग की झील है, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो जरूर लिखें। ये कौन से शहर की शूटिंग है श्रोताओं?

आराधना फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। जिस झील को हमने पूछा है श्रोताओ, ये लेक हेलर झील है ऑस्ट्रेलिया की, जो गुलाबी रंग की है, और ये अमरूद प्रयागराज यानी इलाहाबाद के खुसरो पार्क में पाया जाता है।

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: life was dedicated to the honor, dignity and pride of the tricolor. Mr. Modi highlighted that through his films, he strongly criticized the prevailing social system and worked against social evils. The Prime Minister said Nana Patekar was a strong advocate of taking firm action against anti-national elements.
1: Mashhoor abhineta Nana Patekar ji अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया।
0: We bring you more from our correspondent.
2: Vishwanath Patekar, popularly known as Nana Patekar, was born on January 1, 1951 in Murud, Zanjira in Maharashtra. Nana was known for his intense performances, distinctive dialogue delivery and portrayal of complex characters.
3: Kalam wali bhai kranti lana chahti thi. Kalam ke zor par kale vartaman ko khatam karna chahti thi. Kaun samjha uski baat ko? Kise jagati wo? Main jaag gaya. कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।
2: A recipient of 3 National Film Awards, he was acclaimed for films including Parinda, Krantiveer, Agni Sakshi, Nat Samrat, Ab Tak Chappan and Yashwant. He made his Bollywood debut with Gaman in 1978 and went on to deliver notable performances in Shakti, The Power, Abharan, Taxi Number 9211 and Rajneeti. He gained widespread popularity as gangster Uday Shetty in Welcome and reprised the role in Welcome Back. He remained active in cinema until his final years, appearing in Houseful 5, O Romeo and Subedar, which was released recently. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
0: India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11 in the UN General Assembly. India's first secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेख

0: अपनी प्रगति को दिखाया जा रहा है। चार दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेतृत्व निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi

0: और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
2: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गई और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
3: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे, आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
4: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
5: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए।

0: काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
1: मोहनलाल जोधपुर से, जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो, और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे, आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
2: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है यहाँ पे। इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
3: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए।

0: करते थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
1: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
0: तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शैलेंद्र की रचना आपने सुनी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में।

0: रवि की तर्ज राजेंद्र कृष्ण के बोल मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
4: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है।

0: फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नव में।

फिल्म जानवर का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवाते हैं वो कौन थी इस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में। राजा मेहदी अली खां के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज। और यही है श्रोताओं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
2: मुझे तो लोरी याद आ जाएगी। हाँ। क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरिया, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरिया।
2: हाँ।
1: अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का, संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही है लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
2: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता, तो कहाँ से लोरी गाएंगी। तो वो ऐसे करती हैं कि मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती हैं, तो बच्चे उसी से आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
1: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। चित्र, मोबाइल और ये सब
2: भूल जाते हैं,
1: नहीं याद रहता है
2: जी।
1: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का, और आंखें कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
2: जी।
1: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है, तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
2: जी
1: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात करें विश्व दृष्टि दिवस की
2: जी।
1: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें, और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा।
2: नेत्रदान जी। और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है, इसके अंतर्गत बेटे बेटी में भेदभाव, जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है, कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
1: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से मैनेज करती है, वो लिखें। और इसके अलावा
2: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम महत्व के बारे में जानकारी देंगे।
1: और सुना लीजिए, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
2: जी।
1: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है बड़े दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उगलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आता था। तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
2: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी ममता जी। हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
1: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला और ये बातचीत

0: जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे और इतनी सहजता से, इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूँ। इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने है, और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई। तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है, और 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना, सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए, साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं। लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना लें।
1: नहीं तो ऐसा होता ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं, तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डालें। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल, जांच करवाने चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए, और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना

किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए, आप आंखें एक आंखों से आंखों में बातें होती हैं, और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने, और लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म चिराग, सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और मेरे मोबाइल में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे श्रोता नाना पाटेकर को लिख रहे हैं, विनम्र नमन
0: जी।

0: विनम्र श्रद्धांजलि। दरअसल वो ऐसे अभिनेता थे कि वो गए तो नहीं है, हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जिंदा इंसान हमारे सामने है।
1: जी।
0: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज सुधारक की
1: जी,
0: जिनका नाम छुटनी महतो है
1: जी,
0: और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को हम दे रहे हैं। छुटनी महतो झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका जीवन अंधविश्वास और जो डायन भूत पिशाच जैसी कुरीतियां हैं ना, जिस तरह की बातें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई
1: जी। और ममता जी, कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छिटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
0: और सोनाली जी, यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम
1: उतारा जाता है जी।
0: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए
1: जी,
0: न कि भूत पिशाच के जरिए।
1: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोला डीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
0: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गाँव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा, तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
1: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
0: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की, बल्कि गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को यह भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
1: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही, जहाँ ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
0: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था, बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। ये सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
1: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है, और एक व्यक्ति का साहस पूरे

0: समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था, उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया
1: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया। और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है, अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने मशाल बनकर सामने आई है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं
0: जी।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
2: ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई, ना ना अब तो रिटायर हुई ऑफिस की भी बंदिश ने खुरपी कैची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई। गाना चल रहा है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है।
0: क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, दिन में सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
2: जी।
0: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी की कर सकती हैं
2: जी। एक हमारे साथी ने नेत्रदान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षुदान की बात निकली है, तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
0: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
2: पीछे छूटते जा रहे हैं ना ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुलाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारी लोक संस्कृति की ऐसी धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता।
0: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीख कर हम पता चला कि मोबाइल में ढूंढ रहे हैं गाना और लोरी, फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
2: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
0: अब तो बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है गाने के, गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो लिरिक्स, हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं हम, मतलब आप मतलब हम सभी। आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा। और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदी या किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके कि अपने बच्चे का नाम,
2: उसने
0: कि
2: उसके नाम जोड़े जाते थे,
0: कहाँ किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसे में, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति, चांद, सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
2: छिपी हुई है जी।

0: और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार की स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे, विवाह गीत, शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
1: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
0: बट ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
1: हाँ ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लेंगे और पारंपरिक गीत और इसी पर एक सखी सहेली हम करेंगे। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
0: पसंद आएगा या नहीं।
1: जी
0: जी। और है ना ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
1: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी और कोई जो पटना बोलते पटोहा
0: जी,
1: तो उसको झूले को झुलाते थे, और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में
0: जी। और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार के सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
1: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
0: बिल्कुल याद है।
1: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
0: और अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
1: बिल्कुल अच्छा होगा, ये रहा। भाई हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ में गुनगुना सकते हैं।

भाई देखिए सुना लीजिए, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है, तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। और जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने

0: बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई न कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती है और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं, बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती है, मजबूरी और करना भी चाहिए, तो लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए। दादा दादी है,
1: सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है,
0: बिल्कुल जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को, नानी को बहुत सारी लोरियां याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी सुना सकते हैं।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आरे आओ, एक सखी ने लिखकर भेजी।
0: और जब घुटुक, जिसपे दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेकर, तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक,
1: दूध पिलाएंगे,
0: घुटुक नहीं बोलो, बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह, नामकरण, कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। भाई अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म के मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआं पूजन,
0: हाँ, फिर वो मिट्टी पूजन करती हैं, वहाँ एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकोहली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती हैं तब, सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है,
0: बिल्कुल जी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब ये कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझ कर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है, और नींद में सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय है और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लय और उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है। समय मिलने पर ही मैं अपने शिशु से बातें करती थी। सुलाते समय लोरियां तो जरूर, स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है। रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है, इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं, तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ,
1: तो वे उसमें शामिल होंगे उसमें।

0: वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहां जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहां पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुलाने और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ दादी माँ बुआ

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं इसके लोरी के लिए
1: जी।
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: हाँ तो अगली बार ढोलक लेके बैठेंगे,
1: ढोलक लेके बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहा में घुटुक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाई लो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी। ये लोरी सुनाती,
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो
1: वाह
0: आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टिप्पणियां आ रही है
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: सोहर गाया जाता है, तो वे बेटी के जन्म पर भी

0: गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो 3 बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन, एजुकेशन, साफ सफाई, अच्छा पहनना, ओढ़ा, सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कत्थक डांस स्कूल भी चला रही है और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। क्या बात है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है। असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
0: एक हमारे साथी ने कहा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है। बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती है। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार। फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों। शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है। अब कोशिश है कुछ दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं। अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वह एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है। सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
0: क्या बात है। एक सखी ने लिखा है मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। कितनी अच्छी उदाहरण है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है। बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं। फिर खुद से पूछती हूँ जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों।
0: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटी में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता। जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही हैं, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जो जिन घरों में अभी भी भेदभाव है मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से इस चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
0: और अब गीत सुन ले,
1: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना है?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: बालू फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: रहीम मिस्त्री बात कर रहे हैं, हुजूर साहिब नांदेड़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
1: हाँ जी हाँ, चाहिए आपका, हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब चलता है, तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं और है, ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप विविध भारती का प्रोग्राम? हाँ, तो सुनते
1: हैं है, मिस्त्री के साथ में बांधगा वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं।
0: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
1: जी हाँ, सही। देखिए, हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, जैसा सर्व धर्म संभाव बन के चलते हैं, और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है, जन्नत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों के दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान

0: पिता माता पिता होते हैं और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा।
0: जी हाँ
1: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: जिनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश क्या ये सच्चे क्या सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम। दीदी
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है, आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी।

0: होगी।
1: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता है, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे, हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं। दीदी
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: ये देखो बड़ा हो ये छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
1: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
0: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
1: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
0: जो लाइसेंस बनते हैं हाँ, गाड़ियों के वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
1: वो काम करते हैं।
0: नहीं इसमें ड्यूटी चल रही है।
1: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
0: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा, अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
1: बहुत कठिन काम है ये, तो फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
0: नहीं मैम जी हम अकेली हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
1: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
0: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
1: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
0: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताइए गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
0: मूवी का नाम है सौदागर, जाने के बोल है, तेरी याद आती है। मैम जी तो लाइने हैं, बोल दे इजाजत हो आपकी।
1: सुनाइए।
0: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उस

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जिला श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का छेड़ गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खंडा गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गांव, उसमें खंडगांव गांव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: अच्छी, सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलकर करते है। कोई वाद नहीं, डंटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी, इलेक्शन हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में ना हो कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंदा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फन करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में, हर टाडा बस्ती वाले में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही, सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारे ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसके लिए जो महिला का, तो तुम्हारा सखी सहेली ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना। बहुत अच्छा,
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की। हर कहाँ से फोन लगा, कृष्ण मैडम ने हमारे जो भाई रहते धन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे क्या नहीं, सब मिलते हैं ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना।
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो विविध भारती देश में कहाँ भी जाओ।
0: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम चिड़ावत कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करने वाले हैं, तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है? जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूँ चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ, चलिए गाना बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: बंटवारा फिल्म का है दीदी, सारे वास्ते रे ढोला नैन मेरे जागे रे।
0: अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी। आपको आपके पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जम्मू कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए?
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी काम कर लेता है ना, जैसे अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं, ऐसा ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना, अखरोट उठाते हैं, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं।
0: अरे,
1: पत्थर पे तो, हाँ।
0: अच्छा, कितने अखरोट को तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग एक क्विंटल किसी को निकलता है, एक क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो हाथ से करते हैं?
1: हाँ, हाथ ही, वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है।

0: का पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दम मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते।
1: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना।
0: बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
1: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
0: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
1: चलिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
0: बहुत मुश्किल, मेहनत तो अब यही है, रोजगार
1: बिल्कुल
0: मेहनत करनी पड़ती।
1: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
0: हाँ हाँ सही बात सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ। सारे प्रोग्राम सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम आते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
1: अरे वाह बहुत खूब, गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
0: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहाँ की तुम्हारी आंखें।
1: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जी बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: भाई टू व्हीलर गाड़ी जो है, हाँ? सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं।

0: अच्छा कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं, लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा, पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे, जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में। जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, उसमें गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है ना, गराज के ऊपर है, गराज जितने आए जितने, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऑटो के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते
1: हैं
0: या?
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए, हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है आराम से, उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: उदयपुर में फिल्माया गया गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: मेरे संग संग आया यादों का मिला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था?
1: उदयपुर राजस्थान। किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना व्यस्त तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था, बेचारा अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतने सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते हैं कि खुशी में रखिएगा, बांटते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काइले नगर से बात कर रहा हूँ, मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मैं को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते है, पिताजी के बाद शिक्षक होते है, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती है वो माँ।

0: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले हमने हमारे माताजी पिताजी को कभी नहीं भूले।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
0: अभी मेरा वीट भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे 50 साल से, बचपन से स्कूल में चौथी में से था जब तक तो आज तक लेके हम वीट भारती बचपन से सुन के बड़े होते आए ले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: नई चीजें आती रहे बहुत ही अच्छा लगता है जी।
1: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये शिरकत की थी?
0: जी, सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ। दीदी मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा ही रहेगा दीदी।
1: हाँ बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं संदेश हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
0: जी दीदी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
1: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
1: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैम। सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, 0224002462।

0: चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए.

नमस्कार, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी सखी शिखा शर्मा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सही पोषण, देश रोशन, भारतीय वायु सेना दिवस और स्टडी टिप्स के बारे में। श्रोताओं, कहा जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जिसका संबंध केवल हमारे घर परिवार से ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से है, और वह विषय है सही पोषण, देश रोशन, जो भारत सरकार द्वारा स्वस्थ पोषण और जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य उचित पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, विशेष रूप से बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाना है। इस योजना के तहत बाल वाटिका के बच्चों के साथ साथ देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। श्रोताओं, सही पोषण, देश रोशन केवल एक अभियान नहीं बल्कि भारत के उज्जवल, समर्थ और समृद्ध भविष्य की नींव है। कुपोषण की समस्या देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधक है, और जब तक नागरिक, विशेष रूप से बच्चे, महिलाएं, युवा वर्ग पूर्ण रूप से पोषित और स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा। सही पोषण का मतलब केवल पेट भरना या पर्याप्त भोजन करना नहीं है, ऐसे संतुलित आहार से है जो शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल सही मात्रा में प्रदान करें। सही पोषण हमारे शारीरिक और मानसिक विकास

के लिए बहुत जरूरी है। बचपन में मिलने वाला उचित पोषण हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारी सीखने और समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। इसलिए बच्चों को जंक फूड से होने वाले नुकसान और संतुलित भोजन से मिलने वाले फायदे के बारे में बताएं। किशोरियों और महिलाओं के लिए संतुलित भोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उन्हें जीवन के अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। सही पोषण मिलने से मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान, रजनोवृत्ति के समय उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती, जिससे जीवन के इन चरणों से गुजरने पर वो कुपोषण का शिकार नहीं होती। एक स्वस्थ महिला केवल अपने परिवार के लिए स्वस्थ नहीं रहती, बल्कि उसके स्वास्थ्य का प्रभाव पूरे परिवार, समाज पर पड़ता है। श्रोताओं, सही पोषण केवल भोजन की थाली तक सीमित नहीं है, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली भी हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा है। इसलिए अपने परिवार में ऐसी आदतें विकसित करें जो बच्चों को जीवन भर स्वस्थ रहने में मदद करें। बच्चों को पौष्टिक भोजन की आदत डालें, भोजन में विविधता लाएं, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें, स्वच्छता का ध्यान रखें। श्रोताओं, इस पोषण अभियान के माध्यम से लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों और माताओं के शारीरिक विकास, राशन वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित ट्रैकिंग की जाती है। सही पोषण देश रोशन अभियान के तहत प्रतिवर्ष सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह और मार्च अप्रैल में पोषण पखवाड़ा भी मनाया जाता है। ताजा फल, हरी सब्जियां, खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पोषण वाटिका विकसित की गई है। श्रोताओं, सही पोषण देश रोशन भारत निर्माण की प्राथमिक शर्त है। जब देश की भावी पीढ़ी कुपोषण मुक्त होगी, तभी उनका दिमाग तेज और शरीर ऊर्जावान होगा। सही पोषण स्वस्थ जीवन की पहचान, सही पोषण देश की मजबूत नींव और सही पोषण से देश रोशन। श्रोताओं, स्वास्थ्य और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल बीमारी के समय याद किया जाए। स्वास्थ्य की नींव रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करें। श्रोताओं, अब वक्त हो गया है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए। सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और

0: मुआवजा भी दिलवाएगा, समझे कि नहीं समझे भैया?
1: श्रोताओं, आकाश की असीम गहराइयों में गूंजती जेट विमानों की गड़गड़ाहट और बादलों को चीरते हमारे लड़ाकू विमान केवल गति और शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि वे इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि हमारी सरहदें पूरी तरह सुरक्षित है। आज का दिन हमारे देश के इन्हीं आकाश वीरों को नमन करने का दिन है। हर साल 8 अक्टूबर को पूरा देश गर्व और सम्मान के साथ मनाता है भारतीय वायु सेना दिवस। श्रोताओं, भारतीय वायु सेना की नींव 8 अक्टूबर 1932 को रखी गई थी। उस समय इसे रॉयल इंडिया इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1950 में जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना तो इसके नाम से रॉयल शब्द हटा दिया गया और यह केवल भारतीय वायु सेना के रूप में देश की संप्रभुता का रक्षक बना। भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य है, नभः स्पृशं दीप्तम्, अर्थात आकाश को स्पर्श करने वाले जाज्वल्य मान। श्रोताओं, यह पंक्ति भगवद गीता के 11वें अध्याय से ली गई है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट और दिव्य रूप दिखाते हैं। जिस तरह वह रूप अद्भुत तेजस्वी और भय मुक्त करने वाला था, ठीक उसी तरह हमारी वायु सेना आकाश में अपनी गर्जना से दुश्मनों के मन में भय और देशवासियों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करती है। जब जब देश पर संकट आया, भारतीय वायु सेना ने आगे आकर दुश्मन देश को हराया है। 1971 के युद्ध में वायु सेना का योगदान ऐतिहासिक रहा, जिसने दुश्मन की वायु शक्ति को पूरी तरह पस्त कर दिया। 1999 के कारगिल युद्ध में वायु सेना के हवाई हमलों ने कारगिल विजय की कहानी लिखी। श्रोताओं, वायु सेना केवल युद्ध में ही नहीं, शांति काल में प्राकृतिक आपदाओं के समय देशवासियों की सुरक्षा में भी आगे रहती है। चाहे विनाशकारी बाढ़ हो, सुनामी हो, भूकंप हो, हमारे वीर वायु योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाते हैं, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी में हमारे वीर वायु सेना ने अपनी शक्ति का अद्भुत परिचय दिया। रफाल, मिराज, सुखोई जैसे लड़ाकू विमान हमारी वायु सेना की रीढ़ है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया है। श्रोताओं, वायु सेना में नारी शक्ति ने भी अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। वर्तमान समय में महिलाएं केवल प्रशासनिक पदों तक सीमित नहीं, बल्कि देश की रक्षा के लिए भारतीय वायु सेना में शामिल होकर विमान उड़ा रही हैं, मिसाइलें चला रही हैं। भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह ने भारतीय वायु सेना में शामिल होकर देश की बेटियों के लिए एक मिसाल कायम की है। श्रोताओं, 2026 में भारतीय वायु सेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर आधिकारिक परेड और फ्लाईपास्ट का आयोजन किया गया। इस साल की थीम है भारतीय वायु सेना, अचूक, अभेद्य और सटीक। श्रोताओं, आज का दिन एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर भारतीय वायु सेना के उल्लेखनीय कार्यों को याद करने का दिन है और दिवंगत वायु सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। जब हम अपने घरों में सुरक्षित और निश्चित होकर जीवन जीते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे जवान हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों पर डटे रहते हैं। वायु सेना दिवस हमें केवल अपने वीर जवानों को याद करने का अवसर नहीं देता, बल्कि सिखाता है कि साहस, अनुशासन, कर्तव्य और देश प्रेम से ही हमारा राष्ट्र मजबूत बनता है। मैनो, अब फिर से वक्त हो गया है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: श्रोताओं, हर माता पिता का सपना होता है उसका बच्चा पढ़ाई में आगे रहे, बिना किसी तनाव के अपनी शिक्षा का आनंद ले। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पढ़ाई को लेकर बच्चों और माता पिता दोनों के बीच एक अनकहा तनाव बन जाता है। कभी बच्चा पढ़ने से भागता है तो कभी घंटों किताबों के सामने बैठने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। श्रोताओं,

विधा में हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान और प्रभावी टिप्स की जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों की पढ़ाई को आसान और तनाव मुक्त बना सकती हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में तभी लगता है जब आसपास का माहौल शांत हो। बच्चों के पढ़ने का एक निश्चित स्थान रखें। टेबल कुर्सी ऐसी हो जहां बच्चा सही मुद्रा में बैठ सके। बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई, खेलकूद और आराम का टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई का समय ऐसा हो जब बच्चा थका ना हो। छोटे बच्चों का ध्यान बहुत लंबे समय तक एक जगह नहीं टिकता, इसलिए लगातार 2 से 3 घंटे किताब लेकर बैठने से अच्छा है बच्चा मन लगाकर आधा घंटा पढ़े। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले। इस ब्रेक में उसे टीवी या मोबाइल ना देखने दे। बहनों, केवल उत्तर याद कर लेने से ज्ञान का विकास नहीं होता, इसलिए बच्चों को विषय की कहानी या अवधारणा समझाएं। बच्चों से प्रश्न पूछें और महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स बनाने के लिए कहें। नोट्स बनाने के लिए आप बच्चे फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: श्रोताओं, बच्चे जो भी करते हैं ऐसे वक्त पे ध्यान जरूर रखें, कभी भी उन्हें ऐसे खुला न छोड़ दें कि उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो तो किताबें खोल के बैठे हैं तो पढ़ाई ही कर रहे हैं। इसलिए बच्चों पर अपनी निगाह रखना बेहद ज़रूरी है, उसी कारण से आपके बच्चे अनुशासित और सही जीवन जी पाएंगे आगे, कि मम्मी पापा हमें देख रहे हैं और हमें कुछ गलत ऐसा करना नहीं है। क्यों शिखा जी, है या नहीं ऐसा?
1: आप सही कह रही हैं,
0: बच्चों का मतलब बचपन में ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्यों?
1: हाँ जी, आप बस सही कह रही हैं, बच्चों को बचपन में ध्यान रखना जरूरी है, उन्हें उनकी छोटी छोटी असफलताओं पर निराश होने से रोकें और उनकी सफलताओं पर उन्हें प्रेरित करें।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, जब अभिभावक पढ़ाई को डर और दबाव की जगह एक खोज और खेल का रूप देते हैं तो बच्चा अपने आप सीखने के लिए प्रेरित होता है। श्रोताओं, आज की स्टडी टिप्स आप सभी के लिए बहुत मददगार होंगे। इन्हें अपने बच्चों की दिनचर्या में आप ज़रूर शामिल करें और फर्क देखें। अपने बच्चों के आहार में हरी सब्जियां, मेवे, फल और पर्याप्त पानी शामिल करें। अधिक जंक फूड और मीठे के सेवन से बचें। 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने लें। आउटडोर गेम्स में बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होता है, इसलिए उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भी प्रेरित करें।
0: ये बात शिखा जी आपने बहुत ही अच्छी कही कि रात को कई बार टीवी देखते देखते

0: हम लोगों के साथ हम बच्चों को भी बिठा लेते हैं और पूरा वक्त हो जाता है, और बच्चे फिर सुबह कहते हैं हम स्कूल नहीं जाना चाहते, हमने नींद नहीं करी, मम्मी नींद आ रही है। तो ऐसे वक्त में बच्चों की नींद का पूरा ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।
1: हाँ जी मैम। श्रोताओं, अपना और अपने परिवार का सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ, तब तक आपकी सखी शिखा शर्मा को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

अभी मैंने अपना कार्यक्रम महिला जगत सुन रही थी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवा।

दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त आरजे वंशिका और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट रेडियो शो युव वाणी में। दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता और पीछे मुड़कर देखने का मन नहीं करता। लगता है कि अब यही परेशानी हमेशा रहने वाली है। लेकिन दोस्तों जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ना खुशी हमेशा रहती है, ना गम हमेशा रहता है, ना मुश्किलें हमेशा रहती हैं और ना ही बुरा वक्त। अच्छा, इस पे एक छोटी सी शायरी याद आई कि वक्त की फितरत है बदल जाना, कि वक्त की फितरत है बदल जाना, आज हंसाए तो कल रुलाना। तू बस अपने हौसले को थामे रखना, तू बस अपने हौसले को थामे रखना, हर अंधेरी रात के बाद है सवेरा आना। तो अगर आज जिंदगी थोड़ी मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी मुश्किल होगी। आज अगर रास्ता बंद है तो कल कोई नया रास्ता खुल सकता है। आज अगर किसी चीज का जवाब नहीं मिल रहा तो हो सकता है वक्त खुद उसका जवाब लेकर आए। और हाँ, हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए तो जिंदगी भी थोड़ी बोरिंग हो जाएगी ना। कभी हमने देखा है ना, जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता तो हम क्या करते हैं, फोन को खिड़की के पास ले जाकर खड़े हो जाते हैं। फोन वही, सिम वही, इंसान वही, बस जगह बदलते ही नेटवर्क आ जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी कभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, बस हमें अपना नजरिया बदलना पड़ता है। हम अक्सर प्रॉब्लम्स आते ही सोच लेते हैं मेरे साथ ही क्यों होता है ये, लेकिन शायद जिंदगी पूछ रही होती है तुम इससे क्या सीखोगे। हर मुश्किल हमें तोड़ने नहीं आती, कुछ मुश्किलें हमें मजबूत बनाने आती है। कुछ इंतजार हमें पेशेंस सिखाते हैं, कुछ असफलताएं हमें सही रास्ता दिखाती है और कुछ दर्द हमें अपने अंदर की ताकत से मिलवाते हैं। इसलिए अगर आज कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही तो थोड़ा रुकिए, खुद से कहिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि हम अक्सर अपनी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना देखकर पूरी किताब का फैसला कर देते हैं। अच्छा जरा सोचिए, बारिश जब आती है तो क्या आसमान हमेशा के लिए काला हो जाता है? नहीं, बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही मुश्किलें भी आती हैं, हमें कुछ सिखाती हैं और एक दिन चली जाती हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं मेहनत आज करें और सफलता कल सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाए। हम चाहते हैं आज सपना देखा और कल पूरा हो जाए, आज मेहनत की कल रिजल्ट्स

मिल जाए, आज दुख आया आज ही खत्म हो जाए। लेकिन जिंदगी कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है कि आपका सुख खुशी रास्ते में है, बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। कुछ चीजों को वक्त लगता है, पेड़ को फल देने में समय लगता है, गांव को भरने में भी समय लगता है, सपनों को सच होने में समय लगता है, और इंसान को मजबूत बनने में भी समय लगता है। इसलिए खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ मत करो, पेशेंस का मतलब है कोशिश करते हुए सही समय का इंतजार करना। अच्छा, एक छोटी सी बात बताती हूँ, अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो खुद पर ब्लेम मत डालिए, अपने आप से प्यार से कहिए, हाँ अभी मुश्किल है लेकिन हमेशा मुश्किल नहीं रहेगी, हाँ मैं थका हूँ लेकिन मैं रुका नहीं हूँ, हाँ आज आंखों में आंसू हैं लेकिन कल इन्हीं आंखों में उम्मीद भी होगी। और शायद यही जिंदगी है, कभी हंसी कभी आंसू, कभी जीत कभी हार, कभी भीड़ में साथ कभी अकेले 4 कदम, लेकिन हर मोड़ हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो इसी बात पे एक और शायरी, कि गुजर जाएगा ये दौर भी, कि गुजर जाएगा ये दौर भी, थोड़ा सब्र तो कर, जो आज आंखों में आंसू है, जो आज आंखों में आंसू है, कल वही खुशी बनकर आएंगे। मगर दोस्तों, आज बुरा है तो कल बेहतर भी हो सकता है। जी हाँ, याद रखिए, आज आपकी सिचुएशन आपकी पहचान नहीं है। अगर आज आप असफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज आपके पास कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कम ही रहेगा। अगर आज कोई आपको समझ नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझे जाने के लायक नहीं हैं। और अगर आज जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा रही है तो हो सकता है कल वही जिंदगी आपको बहुत कुछ देने वाली हो। बस आज का दर्द देखकर कल की उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो परेशान मत होइए, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप को संभालिए और खुद से बस एक बात कहिए, ये समय है मेरी पूरी जिंदगी नहीं। क्योंकि परिस्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, वक्त बदलता है, बस आपको अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखना है। तो एक आखिरी शायरी हो जाए इसी बात पे, कि मत घबराए इन बदलते हालातों से, मत घबराए इन बदलते हालातों से, ये भी गुजर जाएंगे। जो आज तुझे कमजोर लगते हैं, जो आज तुझे कमजोर लगते हैं, कल वही तुझे मजबूत बनाएंगे। बस धैर्य रख, खुद पर विश्वास रख, तेरी हिस्से के अच्छे दिन भी आएंगे। तो दोस्तों, जब अगली बार जिंदगी थोड़ी मुश्किल लगे तो शिकायत करने से पहले खुद से कहना, हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, आज अगर दुख है तो कल खुशी भी होगी, आज अगर रास्ता मुश्किल है तो कल मंजिल भी होगी, और आज अगर वक्त आपका साथ नहीं दे रहा तो धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यही है, वो कभी एक जगह नहीं रुकता। तो दोस्तों, बस खुद पर विश्वास रखिए। आइए इसी के साथ सुनते हैं एक छोटा सा म्यूजिक।

0: सो हेलो एवरीवन।
1: हेलो हेलो
0: हेलो हेलो।
2: हेलो
1: हेलो।
0: ओके, मैं ना आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो।
1: एक्सक्यूज मी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे पहले?
0: अच्छा हाँ, देखिए मैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के युववाणी प्रोग्राम से हूँ और मेरा नाम आरजे वंशी का है। और मैं एक छोटे से क्वेश्चन पर बस आप लोगों से थोड़ा सा उस पर बातचीत करना चाहूंगी। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बस उसके आंसर देना है। आप इंटरेस्टेड हो?
1: नहीं,
0: अरे ये क्या बात हुई, गोलगप्पे खाने में व्यस्त है देखो हमारी दोस्त। कोई बात नहीं, आप यूँ समझो इस बार के गोलगप्पे मेरी तरफ से। आप
1: पर
0: तो
1: सच
0: बताओ,
1: में खिलाना पड़ेगा।
0: अरे हाँ, यही खड़ा ना, यही खड़ा है, ठेला दे रहा।
1: ठीक है ठीक है ठीक
0: चलो
1: है।
0: ठीक है
1: हाँ।
0: तो

0: का जो सवाल है ना बड़ा खतरनाक सा है, लेकिन कोई नहीं, आप टेंशन मत करो। तो सवाल ये है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुगाड़ क्या है? अच्छा, एक बार आप आंसर से पहले ना अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
1: वंदना,
2: प्राची,
3: खुशबू।
0: ओके, तो वंदना जी आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुगाड़ क्या है?
2: मेरे लिए सबसे बड़ा जुगाड़ था एग्जाम से एक दिन पहले फर्रे बनाना और उनको अपने जूतों में कहीं ना कहीं छुपाना जहाँ इन्विजिलेटर ना ढूंढ सके।
0: ये तो सबने सोचा है, लेकिन मुझे आज पता लगा आपने किया भी है।
3: वो फर्रे कभी काम नहीं आएंगे अगर तुम यही नहीं देखोगे कि वो एग्जाम पेपर कितने मार्क्स का है।
2: देखो, एग्जाम पेपर कितने मार्क्स हो तो वहां पे जाके पता चल गया ना।
3: वो मुझे पता है ना, क्योंकि वो एग्जाम देने के बाद याद आता है कि अच्छा ये तो 100 का नहीं था, ये 50 का था, 50 का नहीं था, 100 का था।
0: पर्सनल मैटर शुरू।
2: पर फिर भी देखो फर्रे काम आते हैं।
0: बिल्कुल
3: जुगाड़ू इंसान।
0: मतलब पढ़ाई कम थी लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा था ना, और फिर रिजल्ट।
2: अरे रिजल्ट, रिजल्ट ने कॉन्फिडेंस को ऐसा जवाब दिया कि आज तक कॉन्फिडेंस ना रिकवरी मोड में।
4: लेकिन सच कहूँ तो ये हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम भी है, हम कई बार प्लानिंग कम और लास्ट मिनट जुगाड़ ज्यादा करते हैं।
0: बिल्कुल,
3: लेकिन कभी कभी जुगाड़ जरूरी भी होता है, जिंदगी हर चीज का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल थोड़ी देती है।
4: सही कहा, जिंदगी में कई बार प्रॉब्लम पहले आती है और सॉल्यूशन बाद में समझ आता है।
3: म्यूजिक चला दो थोड़ा सा।
0: यहाँ पे म्यूजिक चलाएंगे आपके लिए, कोई ना। तो चलिए सवाल थोड़ा बदलते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने किसी तरह रास्ता निकाल लिया। प्राची जी आप बताइए एक बार।
3: मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी थी और लैपटॉप ने उसी दिन जवाब दे दिया।
2: लैपटॉप ने कहा बहन आज तुम्हारी क्रिएटिविटी का टेस्ट है।
3: एग्जैक्टली, पहले तो मैं घबरा गई, फिर मैंने फोन से प्रेजेंटेशन बनाई, दोस्तों से हेल्प ली और फिर क्या प्रेजेंटेशन दे दी।
0: अच्छा, और प्रेजेंटेशन फिर गई कैसी आपकी?
3: ओहो बहुत अच्छी।
0: वाह,
3: लैपटॉप खराब होने के बाद शायद इतनी अच्छी गई थी कि बाद में लगा लैपटॉप खराब होना भी शायद मेरे करियर का मोटिवेशनल स्पीकर था।
0: नाइस।
4: यही तो है असली जुगाड़, कभी कभी प्रॉब्लम्स हमें रोकने नहीं आती, वो हमें हमारी हिडन एबिलिटीज दिखाने आती है।
0: हाँ यार, इसी बात पे ना मुझे एक शायरी याद आई है।
5: रास्ते बंद हो तो रुकना जरूरी नहीं, रास्ते बंद हो तो रुकना जरूरी नहीं, नया रास्ता बनाना भी तो हुनर है। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, हौसला हो तो हर मोड़ पर एक सफर है।
2: लेकिन एक बात बताऊं, हमारे यूथ में जुगाड़ और बहाने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है।
0: ओहो, एक्सप्लेन कीजिए जनाब जरा।
2: हाँ, सो अगर हम कहते हैं ना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन मैंने दूसरा रास्ता खोज लिया, यह जुगाड़। लेकिन अगर हम कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए मैंने शुरू ही नहीं किया, इसे कहते हैं एक्सक्यूज।
0: हाँ बिल्कुल।
3: वाह, पहली बार तुम्हारे जोक्स में विजडम दिखाई दी मुझे।
2: स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा नहीं मिलेगा ये।
3: नीडेड लग रहा है मुझे।
4: सच में फर्क बहुत बड़ा है, जुगाड़ प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता खोजता है, बहाना प्रॉब्लम से बचने का रास्ता खोजता है।
0: हाँ तो खुशबू, आपका नाम खुशबू है ना। हाँ तो आज के यूथ के लिए जुगाड़ का मतलब क्या होना चाहिए, एक बार बताइए।
4: मेरे हिसाब से जुगाड़ का मतलब शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, जुगाड़ का मतलब होना चाहिए लिमिटेड रिसोर्स प्लस क्रिएटिव थिंकिंग प्लस मेहनत देन सॉल्यूशन। आज का यूथ अगर हर छोटी परेशानी में सिर्फ सुविधाएं ढूंढेगा तो मुश्किल आते ही परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा तो मुश्किलें भी उसे देखकर सोचेंगी भाई इससे पंगा लेना ठीक है।
0: हाँ, बिल्कुल।
3: मतलब जिंदगी में गूगल मैप्स बंद हो जाए तो खुद रास्ता ढूंढना सीखो।
4: एग्जैक्टली।
5: अगर हम अभी सड़क पर जाएं और रैंडम यूथ से पूछें, भाई जिंदगी में सबसे बड़ा जुगाड़ क्या लगाया, तो कोई बोलेगा असाइनमेंट दोस्त से करवाया, कोई बोलेगा पैसे कम थे दोस्तों के साथ मिलकर बर्थडे मनाया, कोई बोलेगा घर वालों को कन्विंस करके लेट नाइट आउटिंग की, और कोई शायद ये भी कहेगा मुझे खुद नहीं पता मैं जिंदगी चला कैसे रहा हूँ।
2: ये ही आखिरी वाली तो मैं हूँ सही में।
5: लेकिन असली बात, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर सोचे तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़े जुगाड़ वही होते हैं जिनके बारे में हम किसी को बताते भी नहीं। जब पैसे कम थे लेकिन सपना बड़ा था, जब मार्क्स कम आए लेकिन हमने दोबारा कोशिश की, जब किसी ने साथ नहीं दिया लेकिन हमने खुद का साथ नहीं छोड़ा।

0: बढ़ा। जब रास्ता साफ नहीं था, फिर भी हमने एक कदम आगे बढ़ाया। वही जिंदगी का असली जुगाड़ है।
1: और शायद जिंदगी में हर बार परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कभी कभी बस इतना चाहिए कि जो है जितना है उससे शुरुआत कर दो।
0: क्या बात है खुशबू। इसी बात पे मुझे एक छोटी सी शायरी याद आई है कि सामान कम हो तो क्या, सामान कम हो तो क्या, हौसला कम मत होने देना, रास्ते कम पड़े तो कदम रोक मत देना। जीत हमेशा साधनों से नहीं मिलती, जीत हमेशा साधनों से नहीं मिलती, कभी कभी जुगाड़ भी सपनों को मंजिल तक ले जाता है।
1: तो चलो एक बार लास्ट में हम फाइनल फंड राउंड करते हैं, तो एक रैपिड फायर करते हैं कि सवाल पूछूंगी और आपको फटाक से बिना सोचे ना जवाब देना है, ठीक है? अगर जिंदगी एक प्रॉब्लम दे तो
2: पहले गूगल, फिर दोस्त,
1: और उसके बाद खुद पर भरोसा,
2: और अगर पैसा कम हो तो
3: चोरी
2: या क्रिएटिविटी
1: और मेहनत।
2: चोरी करने में देखो मेहनत भी लगती है।
1: हाँ, सही बात है। सही बात है, सजा भी होती है।
2: और अगर कोई बोले तुमसे नहीं होगा, फिर
3: कहेंगे भाई तू देख लेना अब।
1: क्योंकि कई बार दूसरों का डाउट ही हमारी डिटर्मिनेशन बन जाता है।
0: हाँ तो दोस्तों, जुगाड़ सिर्फ किसी चीज को जोड़ने का तरीका नहीं है, जुगाड़ एक माइंडसेट है। जब जिंदगी कहे मेरे पास तुम्हारे लिए आसान रास्ता नहीं है, तो आप कहो कोई बात नहीं, मैं रास्ता बना लूंगा। क्योंकि हर किसी के पास बराबर रिसोर्सेज नहीं होते, हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन सोचने की कैपेसिटी, कोशिश करने की हिम्मत और हार न मानने वाला फैसला हमारे हाथ में जरूर होता है। तो अगली बार जिंदगी कोई प्रॉब्लम दे तो घबराना मत, थोड़ा सोचिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा जुगाड़ लगाइए और फिर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और याद रखिए, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके सामने आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा ये ज़रूर आपके हाथ में है।
2: हाँ तो भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपके बड़े ज़बरदस्त से खतरनाक से, जितना ज़बरदस्त सवाल नहीं था उससे खतरनाक मुझे जवाब मिले। मज़े आए आपसे बात करके, ठीक है
3: भाई? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: ठीक है, तो आज के गोलगप्पे मेरी तरफ से एंजॉय करिए। बाय बाय।
0: तो दोस्तों, बस मैं आपको लास्ट में यही कहूंगी कि प्रॉब्लम आए तो पैनिक नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए और थोड़ा हंसी और अपना जुगाड़ लगाइए। तो इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन अच्छा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन के बीच कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना जरूर हमारे हाथ में है। अच्छा, एक बात बताइए, जब सुबह उठते ही मोबाइल में कोई बुरी खबर दिख जाए, घर में किसी बात पर बहस हो जाए, काम बिगड़ जाए, या कोई अपना ऐसी बात कह दे जो दिल पर लग जाए, तो क्या हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये आगे की बात जरूर आपके लिए ही है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सकारात्मक रहने की कला की, लेकिन ऐसी सकारात्मकता की नहीं जिसमें इंसान अंदर से परेशान हो और बाहर से कहता फिरे मैं तो बहुत खुश हूँ, एकदम मस्त। हम बात करेंगे उस सकारात्मकता की जो असली जिंदगी में काम आए, जो मुश्किलों में हिम्मत दे, गलतियों से सीखना सिखाए और परेशानियों के बीच भी सही फैसला लेने की ताकत दे। दोस्तों, सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, या कभी गुस्सा नहीं करेंगे, या कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, या खुद परेशान नहीं होंगे। आप इंसान हैं, कोई मोबाइल का हैप्पीनेस मोड नहीं जिसे एक क्लिक में ऑन कर दिया।

अगर किसी दिन मन उदास है तो खुद को जबरदस्ती खुश दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अपनी भावनाओं को समझिए, थोड़ा आराम कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। याद रखिए, हर पल मुस्कुराना जरूरी नहीं, हर दर्द छिपाना जरूरी नहीं, खुद को समझना भी हिम्मत है, हर जंग में जीत जाना जरूरी नहीं। चलो आपको थोड़ी सी रियल लाइफ टिप्स देती हूँ अब मैं इस पे, कि जब मन खराब हो तो खुद से कहिए, आज मेरा दिन मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी मुश्किल है। और हाँ दोस्तों, हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की।

खराब हो तो खुद से कहिए, आज मेरा दिन मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी मुश्किल है। और हाँ दोस्तों, हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, किसी ने आपकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया और बस दिमाग में शुरू हो गया सवालों का मेला। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है? क्या लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं? दोस्तों, हर बात का संबंध आपसे नहीं होता। कभी कभी सामने वाला खुद परेशान होता है या कभी बिजी होता है, और कभी उसकी सोच आपसे अलग होती है। हर किसी की राय को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। और दोस्तों, जब कोई बात आपको बुरी लगे तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले खुद से 3 सवाल ज़रूर पूछिए। क्या ये बात सच में इतनी बड़ी है? क्या मैं पूरी सिचुएशन जानता हूँ? क्या 1 हफ्ते बाद भी ये बात इतनी ही मायने रखेगी? कई बार जवाब मिलते ही आधी परेशानी कम हो जाती है। दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को कंपेयर मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया खोलते ही कोई फॉरेन घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में सक्सेस हो गया है, और कोई अपनी परफेक्ट लाइफ की रील डाल रहा है, और हम अपनी जिंदगी देखकर सोचने लगते हैं, यार सब आगे निकल गए, बस मैं ही पीछे रह गया। लेकिन भाई जरा रुको, आप किसी की जिंदगी का सबसे अच्छा पल देखकर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हो? सोशल मीडिया पर लोगों के अचीवमेंट्स दिखाई देते हैं, उनकी सारे स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स नहीं। किसी की नौकरी लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। किसी की शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी अधूरी है। कोई जल्दी सक्सेस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। दोस्तों, आप अपनी तुलना कल वाले खुद से कीजिए। क्या आज आपने कुछ नया सीखा? अपनी किसी आदत में सुधार किया? अपने गोल के लिए थोड़ा काम किया? तो ये भी प्रोग्रेस है। दूसरों की रफ्तार से क्यों परेशान है तू? दूसरों की रफ्तार से क्यों परेशान है तू? तेरा सफ़र है, तेरी अपनी उड़ान है। मंजिल मिलेगी अपने सही वक्त पर, मंजिल मिलेगी अपने सही वक्त पर, बस चलते रहना ही तेरी पहचान है। दोस्तों, समस्या पर नहीं, उसके अगले कदम पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, दिन भर यही सोचते रहना कि मुझसे गलती क्यों हुई, मेरी किस्मत ही खराब है, अब क्या होगा। और दूसरा, अपनी गलतियों को समझना, कमज़ोर टॉपिक्स पर वर्क करना और अगली बार के लिए और अच्छी तैयारी करना। पहला रास्ता आपको परेशानी में उलझाए रखेगा, जबकि दूसरा रास्ता आपको समाधान की ओर ले जाएगा। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अक्सर हम एक छोटा सा अगला कदम जरूर चुन सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जब भी कोई परेशानी आए, एक कागज़ पर 2 बातें ज़रूर लिखिए। मेरे कंट्रोल में क्या है, और दूसरा, मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम कीजिए, जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि दोस्तों, पॉजिटिव सोच प्रॉब्लम को जादू से ख़त्म नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम को फेस करने का बेहतर तरीका देती है। तो दोस्तों, अपनी एवरीडे लाइफ में छोटी छोटी खुशियों के लिए जगह बनाइए। पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी अचीवमेंट का इंतज़ार मत कीजिए। सुबह की चाय, परिवार के साथ 10 मिनट की बातचीत, पसंदीदा गाना, थोड़ी देर टहलना, किसी दोस्त से दिल की बात करना, या दिन भर के काम के बाद सुकून से बैठना, ये छोटी चीज़ें भी जिंदगी को बेहतर महसूस कराने में मदद करती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ी खुशी के इंतज़ार में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं, नौकरी लगेगी तब खुश होंगे, पैसे आएंगे तब खुश होंगे, सब कुछ सही होगा तब चैन मिलेगा। अरे भाई, सब कुछ सही होने का इंतज़ार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के खूबसूरत पल ही निकल जाएं। तो रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें याद कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वे बहुत बड़ी हों। हो सकता है आज आपने टाइम पर काम पूरा किया हो, किसी की मदद की हो, या किसी मुश्किल दिन को पेशेंसली संभाला हो। इससे आपका ध्यान दिन की अच्छी बातों पर भी जाना शुरू होगा। दोस्तों, म्यूजिक और अपने डेली रूटीन पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप सुबह उठते ही नेगेटिव खबरें देखने लगते हैं, दिन भर दूसरों की ज़िंदगी से खुद को कंपेयर करते हैं, और रात को पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में फिर से सोचने लगते हैं, तो मन का थकना नेचुरल है। इसलिए अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंज कीजिए। जैसे सुबह उठकर कुछ देर मोबाइल से दूर रहिए, दिन के 3 जरूरी काम तय कीजिए, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टहलना या एक्सरसाइज का टाइम निकालिए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जिनसे आप खुलकर बात कर सकें, ज़रूरत पड़ने पर आराम कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम्स किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर कीजिए। और हाँ, पॉजिटिव रहने का मतलब हर नेगेटिव इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना भी नहीं है। कभी कभी किसी की बात सही हो सकती है, भले ही वो सुनने में अच्छी ना लगे, इसलिए हर आलोचना से परेशान होने के बजाय ये समझिए कि

उसमें सीखने लायक कुछ है या नहीं। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी कोई जादू नहीं, रोज की एक आदत है। तो आज की सबसे ज़रूरी बात यही है कि ज़िंदगी हमेशा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। कभी मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कभी अपने लोग नहीं समझेंगे और कभी खुद पर भी भरोसा कम होने लगेगा। लेकिन ऐसे टाइम में खुद को याद दिलाइए कि एक खराब दिन आपकी कैपेबिलिटी का प्रूफ नहीं है, एक असफलता आपकी पूरी कहानी नहीं है और किसी दूसरे की सक्सेस आपकी हार नहीं है। रास्ते मुश्किल हों तो कदम छोटे कर लेना, मन थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेना, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में ए दोस्त खुद का हाथ पकड़ना भी कभी मत भूल जाना। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहने की कला दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना नहीं, बल्कि दुनिया के हर उतार चढ़ाव के बीच खुद को संभालना सीखना है। आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, परेशानी आएगी तो उससे भागेंगे नहीं, गलती होगी तो खुद को कोसेंगे नहीं, और जिंदगी में अच्छा होगा तो उसे कल पर नहीं टालेंगे। क्योंकि खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जिंदगी को समझने और संभालने की कोशिश करना जरूरी है। तो दोस्तों, अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, उम्मीद का दीपक हर दिन जलना है, उम्मीद का दीपक हर दिन जलना है, गिरकर भी खुद को प्यार से उठाना है। जिंदगी चाहे जितनी इम्तिहान ले, जिंदगी चाहे जितने इम्तिहान ले, हमें हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनते जाना है। तो दोस्तों, सीखते रहिए और जिंदगी को एक मौका और देते रहिए। आइए इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिक प्ले

दोस्तों कहते हैं दुनिया को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, आंखों की देखभाल भी जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे की, जो हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यानी कि आज मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों की आंखों की सेहत और दृष्टि की देखभाल के प्रति जागरूक करना है। सोचिए, सुबह उठकर सूरज की पहली किरण देखना, माँ के चेहरे की मुस्कान देखना, दोस्तों के साथ बिताए पल देखना, किताब के अक्षर पढ़ना, इन छोटी छोटी चीजों को हम रोज देखते हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब देखने में परेशानी होने लगे। तो मैं बताऊंगी आपको अब आंखों की देखभाल के कुछ आसान तरीके। पहला, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक ले। मोबाइल और कंप्यूटर को लगातार यूज करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम दे। दूसरा, आंखों को बार बार रगड़ने से बचे, हाथों की गंदगी आंखों तक पहुंच सकती है। तीसरा, पर्याप्त रोशनी में पढ़े। कम रोशनी या बहुत तेज रोशनी में लंबे समय तक पढ़ने से आंखों पर प्रेशर बढ़ सकता है। चौथा, बैलेंस्ड डाइट ले, ये बहुत जरूरी है, सबको पता है। हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक भोजन सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए अच्छे हैं। पांचवा, आंखों में परेशानी को नजरअंदाज ना करें। धुंधला दिखाई देना, लगातार दर्द या और कोई प्रॉब्लम हो तो आंखों के डॉक्टर से चेक करवाएं। दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों स्क्रॉल करने का टाइम तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी आंखों के लिए कुछ मिनट निकालना भूल जाते हैं। याद रखिए, नज़र सिर्फ रास्ते नहीं दिखाती, नज़र ही तो जिंदगी के रंग दिखाती है। इसलिए आंखों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो इस विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे पर एक छोटा सा संकल्प ले, अपनी आंखों को समय देंगे, उनकी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करेंगे और दूसरों को भी आंखों की देखभाल के लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि साफ नजर सिर्फ बेहतर दिखाई देना नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी जीना भी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युववाणी प्रोग्राम। आई होप आपको आज का प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा और आपने गानों को तो काफी एंजॉय किया होगा। तो अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। तो अपनी दोस्त आरजे वंशिका को दीजिए इजाजत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आप सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
5: मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
6: GST परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
7: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मोदी ने नई दिल्ली की यशोभूमि के बारे में जानकारी दी।
8: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात

0: किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषधि कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शीर्षक और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे बस थोड़ी देर में यानी 6:10 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 6:30 हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, इन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 किसान भाइयों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का किसान वाणी, इसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। लोक संगीत में आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे इंद्रा शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या और अंग्रेजी के समाचार रात 9:00, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से और 11:05 पर समाप्त होंगे हमारे आज के प्रसारण।

श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम और अब आपको बता दें कल के कार्यक्रमों के बारे में। सवेरे 6 बजे हिंदी में समाचारों के साथ हमारी सभा आरंभ होगी। ये समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधनवार चिंतन। झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे 6:30 पर और 6:35 पर सुनिएगा रामचरित मानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता। 7 बजे नमस्कार अलवर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप कल सवेरे 7:30 पर। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे गजलें। 8:30 पर सुनिएगा एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

समाचार आप सुनेंगे सुबह 9 बजे और दिन में 1 बजे और शाम 6:30 पर, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:10 से सुनेगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:45 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 12:05 से सुनिए फिर से विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। अंग्रेजी के समाचार 2 बजे और 2:15 पर दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 से सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे बहनों के लिए महिला जगत कार्यक्रम होगा। 5:30 युववाणी कार्यक्रम युवा श्रोताओं के लिए। 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। 6:10 पर सुनिए काव्य गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे श्री योगेश चंद वशिष्ठ, श्री हेमंत शर्मा और श्री मांगीलाल शर्मा। शाम 7 बजे ग्राम भारती कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, सरसों की बुआई की तैयारी, भेंट वार्ता होगी, रबी सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें और एक जानकारी आप सुनेंगे अपने खेत की मिट्टी को पहचाने, साथ ही मौसम और बाजार का भाव। तो ये थे हमारी आज की सभा के शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 आपको सुनवा रहे हैं हम फिल्म संगीत। श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है बॉम्बे फिल्म से। चित्रा की आवाज है, संगीत ए आर रहमान का, और गीत को लिखा महबूब ने।

कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ें। फिल्म का नाम है दामिनी। गीत को लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओ, दामिनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी कुमार शानू और साधना सरगम की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। प्रीतम और अरिजीत सिंह की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत, फिल्म ए दिल है मुश्किल।

0: ऐ दिल है मुश्किल, इस फिल्म के गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का का चैनल है। आप सुनिए हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए युवा शक्ति की जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों का आगाज। पहले चरण में राजस्थान के 7 जिले शामिल। और राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। 10 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। इससे लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। इसके 5.5 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पिछले एक दशक में देश की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से दुनिया भर के टेक दिग्गज, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स और निवेशक एक मंच पर आए हैं। इस 4 दिन के सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की प्रगति को दिखाया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नाम नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा, नागौर और उदयपुर सहित 16 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और 104 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर रखी गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है और गांवों, चौपालों से

0: लेकर राजनीतिक दलों के कार्यालयों तक दावेदारों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया को लेकर संबंधित जिलों में कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है। पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा। 24 अक्टूबर को पंच और सरपंचों के लिए वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को देखते हुए पंचायत समिति स्तर पर 10 अक्टूबर को प्रत्याशी प्रबोधन कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके माध्यम से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी जाएगी। श्री सिंह आज जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग में आयोजित मतदाता जागरूकता के संबंध में वीसी के जरिए बैठक कर रहे थे। उन्होंने पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव में मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से इस बारे में आज अधिसूचना जारी की गई। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया था। राज्य में दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। इसके साथ ही देश में एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान का संकल्प साकार हुआ। एक रिपोर्ट।
1: अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और स्वायत्तता समाप्त हो गई और वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। पहले वहां अलग संविधान और अलग झंडा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 को अपने फैसले में केंद्र सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह वैध करार दिया। साथ ही ये कहते हुए मोहर लगाई कि कोई भी राज्य देश के संविधान से ऊपर नहीं है। अब देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नागरिकों को जमीन खरीदने और रोजगार पाने के समान अधिकार मिल गए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से जहां आतंकवाद और अलगाववाद पर लगाम लगी है, वहीं पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास से समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है। न्यूज डेस्क से सालिहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान से युवा शक्ति को जोड़ा जाएगा। जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों के माध्यम से टीबी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में जोश टीमों के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये टीमें टीबी के लक्षण, बचाव, समय पर जांच और इलाज कराने में संदेश देंगी। साथ ही टीबी से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगी। पहले चरण 11 राज्यों और 55 जिलों में जोश टीमें शुरू की जा रही हैं। इनमें राजस्थान के अलवर, बांसवाड़ा, बारां, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद और जयपुर जिले भी शामिल हैं। इनमें जोश टीम का पायलट शुभारंभ किया गया। इस टीम में माय भारत वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स सहित अन्य युवाओं को शामिल किया गया है। आज विश्व दृष्टि दिवस है। नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी के लिए सुलभ और किफायती नेत्र देखभाल के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम लव योर आईज रखी गई है। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर धारा महिंद्रा ने बताया कि ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी सहित कई तरह की बीमारियां शुरुआती दौर में बिना किसी लक्षण के ही बढ़ती हैं। ऐसे में नियमित अंतराल पर आंखों की जांच जरूरी है।
2: छोटे बच्चे आजकल काफी ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की आंखों में कई बार चश्मे का नंबर आ जाता है, जिसके लिए चेकअप कराने के लिए अगर हम उनको सही समय पर डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो उनकी आंख के विजन का डेवलपमेंट है वो सही हो पाता है। इसके अलावा ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर हम सही समय पे कैटरेक्ट का तो पूर्णतया समाधान हो जाता है लेंस लगाने के बाद और ऑपरेशन के बाद ही। ग्लूकोमा के मरीजों में समय रहते डॉक्टरी सलाह लेते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो ग्लूकोमा से होने वाली जो भी दृष्टि

0: में कमी होती है तो हम रोक सकते हैं काफी हद तक।
1: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह निधन हो गया। गोवा में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। नाना पाटेकर उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत सहित कई यादगार फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी।
2: मैं दिलों में रहता हूँ, उम्मीदों में बसता हूँ, सपनों में जीता हूँ और गम पीता हूँ। जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं।
1: नाना पाटेकर के निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और सिने प्रेमियों में शोक छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नाना पाटेकर ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।
3: वे एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि उनका सशक्त अभिनय हमेशा याद किया जाता रहेगा। राज्य के तापमान में इन दिनों उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अधिकतर स्थानों पर दिन के समय गर्मी का असर है, वहीं उदयपुर और सिरोही सहित दक्षिणी जिलों में रात का तापमान में गिरावट आई है। यहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज होने से सुबह शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। अगले सप्ताह उत्तर पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 10 और 11 अक्टूबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए युवा शक्ति की जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों का आगाज। पहले चरण में राजस्थान के 7 जिले शामिल। और राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। 10 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दादीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, प्रशासनिक गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम हुए। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले के 315 शहरी वार्डो में सदस्यों के लिए 2 चरणों में हुए मतदान के बाद 14 सितंबर को मतगणना पूरी हुई। अजमेर नगर निगम की 80 वार्डों के परिणाम आने के बाद महापौर पद के लिए चुनाव हुआ। भाजपा की अनामिका शर्मा 43 मत प्राप्त कर महापौर निर्वाचित हुई। कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 मत मिले। पिछले दिनों पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा हुई। जिले की 10 पंचायत समितियों की 261 ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके लिए 993 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 23 अक्टूबर को सरवाड़, केकड़ी, सावर, पिसांगन, श्रीनगर और अजमेर ग्रामीण के संबंधित क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को अजमेर ग्रामीण के शेष क्षेत्र के

0: साथ ही बड़लिया, सिलोरा, अराई और भिनाए में मतदान होगा। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का काम भी किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की पुनः परीक्षा 20 सितंबर को हुई। राज्य के 11 जिलों में 666 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अजमेर में भी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। वहीं पिछले दिनों आरपीएससी की एक टीम ने गुजरात लोक सेवा आयोग का अध्ययन दौरा किया। टीम ने वहां साक्षात्कार प्रक्रिया और अभ्यर्थियों को अंक देने की व्यवस्था का अध्ययन किया। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में 17 सितंबर से विभिन्न गतिविधियां शुरू हुई। 19 से 25 सितंबर तक सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में पेंशन, राजस्व, पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा और टीकाकरण शिविर भी आयोजित हुए। अजमेर रेल मंडल के सोजत रोड रेलवे स्टेशन से पहली बार चूना पत्थर का व्यवसायिक लदान शुरू हुआ। 58 वैगन में चूना पत्थर बोकारो स्टील प्लांट के लिए भेजा गया। ये मालगाड़ी करीब 1502 किलोमीटर की दूरी तय कर बोकारो पहुंची। इससे रेल मंडल को एक चक्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का माल भाड़ा मिला। रेल मंडल में 14 से 30 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा भी मनाया गया। निबंध, प्रश्नोत्तरी, टिप्पण, प्रारूप लेखन, वाक और कविता पाठ सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। करीब 165 रेल कर्मियों ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। समापन समारोह में 90 रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में स्वच्छता तथा कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूकता गतिविधियां भी हुई। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े अवसरों पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व ओजोन दिवस पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई। इसमें 63 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं आयुर्वेद दिवस पर जेएलएन अस्पताल परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में परामर्श शिविर लगाया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने विद्यार्थियों को बिजली बचत और बिजली सुरक्षा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने अपने स्कूलों में बिजली के उपकरणों का निरीक्षण कर ऊर्जा बचत के उपायों की जानकारी ली। उन्हें बिजली सुरक्षा, वायरिंग और अन्य उपकरणों के उपयोग के बारे में बताया गया। धार्मिक आयोजनों के तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में झांकियां सजाई गई, भजन कीर्तन हुए। वहीं गणेश चतुर्थी पर घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बाबा रामदेव जयंती के अवसर पर रामदेवरा जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में सेवा शिविर लगाए गए। इस बीच श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही पुष्कर के घाटों पर श्रद्धालु पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम रे जरिए 25 करोड़ विद्यार्थियों ने जोड़ेला। पंचायती राज संस्था वाला चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी भे बनसा गई। पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू भयो। टीबी मुक्त भारत अभियान सारू जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमा री शुरुआत। पहला दौर माए प्रदेश रा 7 जिला शामिल। राज्य रा तापमान माए उतार चढ़ाव रो दौर जारी। 10 अक्टूबर नुओ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेवन री संभावना। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी सेवाओं रो फायदो जनता ताई पुगावन माए डिजिटल जुड़ाव रो खास काम है। वे आज नई दिल्ली माई स्वरूफी इंडिया मोबाइल कांग्रेस रा 10वां संस्करण रा उद्घाटन जलसा माई बोल रहा हा। श्री मोदी कहो कि डिजिटल जुड़ाव उन जनता ने भनाई लिखाई और स्वास्थ्य रा हल्का माई सुविधा मिलिया है। वे कहो कि आज 5G कनेक्टिविटी देश रा कोना कोना माई पूग की है। प्रधानमंत्री कहो कि सरकार क करीब 25 करोड़ विद्यार्थियों ने भनाई लिखाई रा न्यारा न्यारा डिजिटल और ऑनलाइन मंचाओं जोड़बारी कोशिश कर रही है।

0: श्री मोदी दीक्षा प्लेटफॉर्म रो जिक्र करता थका डिजिटल शिक्षा रा बधता महत्व रे बारा माई जानकारी दीनी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25

0: मौके केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहो के लारला 10 साल माए देश माए टेलीकॉम और डिजिटल हलका माए बेहतरीन काम फियो है। वह कहो के 4 दिन री इंडिया मोबाइल कांग्रेस रा आयोजन दुनिया भर रा तकनीक रा जानकार नीतियां बनावन वाला कारोबारी जानकार स्टार्टअप्स और निवेश करन वाला एक मंच माथे आया है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी फेवन सा गई आज नाम पाना दाखिल करन रो काम शुरू फे गयो। अजमेर अलवर जोधपुर कोटा नागौर और उदयपुर समेत 16 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव रो काम आज शुरू फे गयो। उम्मीदवार 13 अक्टूबर तक संबंधित चुनाव अधिकारी सामी नाम पाना दाखिल कर सके है। दाखिल करी जा नाम पाना री 14 अक्टूबर न जांच करी जावेला जदके 15 अक्टूबर न नाम पाछा लिया जा सकेला। नाम पाछा लेवन रो भगत पूरो हुए ताई चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जावेला। इविचे नाम पाना दाखिल करन रो काम शुरू हुए बनसा गई गांव चौपाल उनलेर सियासी पार्टियां रा दफ्तरा ताई दावेदारा री हलचल बदवा लगी है। पंचायत चुनाव रा पहला दौर माए पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू फे बन सा गई। संबंधित जिला रा कलेक्ट्रेट परिसर माए हिफाजत रा जरूरी इंतजामात करी चिया है और नाम पाना दाखिल करन री प्रक्रिया री जानकारी देवन सारू हेल्प डेस्क लगाई है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव रा पहला दौर माए 22 अक्टूबर ने वोट पड़ेला जबकि 24 अक्टूबर ने पंच और सरपंचों चुनाव भेला। निपक्ष चुनाव शांति और साफ कोई सागे करावन सारू पुलिस और प्रशासन री ओरू सगली जरूरी तैयारियां करी जा रही है। इबीचे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो के पंचायती राज संस्था वाला चुनाव न ध्यान रखता थका पंचायत समिति लेवल मत है 10 अक्टूबर ने प्रत्याशी प्रबोधन कार्यक्रम रखो जावेला। इन जरिए चुनाव लड़बारी मर्जी रखने वाला उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल करने जुड़ी जानकारी दी जावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त आज मारा दफ्तरों वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए राखी जी मतदाता जागरूकताओं जुड़ी मीटिंग माई बोल रहा है। वह पंचायत चुनाव माई बताऊं बत्ता मतदाताओं की भागीदारी तय करण सारू मोटा पैमाना माथे मतदाता जागरूकताओं जुड़िया कार्यक्रम राखन रा हुक्म दीना। पंचायत चुनाव रा तेत वोट पड़वारा दिन संबंधित हलका माए छुट्टी रहवेला। वित्त विभाग रा संयुक्त शासन सचिव री ओरू इवारा माए आज अधिसूचना जारी करी जी। केंद्र सरकार 5 अगस्त 2019 ने करी जिया ऐतिहासिक फैसला रा तेत जम्मू कश्मीर संविधान रा अनुच्छेद 370 रा प्रावधान निरस्त करती नहा। ई पाछे जम्मू कश्मीर राज्य ने तोड़र केंद्र रा राज वाला दो प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया चिया। इस आगे देश में एक राष्ट्र एक संविधान एक निशान एक प्रधान और एक विधान रो संकल्प साचो फियो। पेश है एक रपट।
1: अनुच्छेद 370 और 35 ए के हटने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और स्वायत्तता समाप्त हो गई और वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। पहले वहां अलग संविधान और अलग झंडा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 को अपने फैसले में केंद्र सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह वैध करार दिया, साथ ही ये कहते हुए मोहर लगाई कि कोई भी राज्य देश के संविधान से ऊपर नहीं है। अब देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नागरिकों को जमीन खरीदने और रोजगार पाने के समान अधिकार मिल गए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से जहां आतंकवाद और अलगाववाद पर लगाम लगी है, वहीं पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास से समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है। न्यूज डेस्क से सालिहा गाजी।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। देश में टीबी मुक्त भारत अभियान रा तेत जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीम मोटियारा ने जोड़ टीबी रे खिलाफ जनता में जाग जगाई जावेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में जोश टीम की शुरुआत रे मौके आ जानकारी दीनी। वे बतायो के ए टीम टीबी रा लक्षण इनो बचाव और टेम सर जांच करावन और टीबी जुड़ी गलत फहमियां आगे करण रे बारे में जानकारियां देवेला। इरा पहला दौर में 11 राज्यों और 55 जिला में जोश टीमा शुरू करी जा रही है। आमाय प्रदेश रा

0: अलवर, बारा, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद और जयपुर जिलाए शामिल है। आज विश्व दृष्टि दिवस है। आँखियां रा स्वास्थ्य उन जुड़ी जाग जगावन और सगला सारू आँखियां री आसान और सस्ती सार संभाल बाबत ओ दिन मनायो जावे है। विश्व दृष्टि दिवस रो इन साल रो मुद्दो लव योर आईज राखी चियो है। इमोके जयपुर रा एसएमएस अस्पताल री आँखियां री डॉक्टर धीरा महिंद्रा बतायो के काला पानी समेत कई भांतरी बीमारियां रा शुरुआती दौर माई कोई लक्षण निजर नहीं आवे है। वह कहो के टेम टेम पर आँखियां री जांच जरूरी है।
1: छोटे बच्चे आजकल काफी ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की आंखों में कई बार चश्मे का नंबर आ जाता है, जिसके लिए चेकअप कराने के लिए अगर हम उनको सही समय पर डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो उनकी आंख के विजन का डेवलपमेंट है वो सही हो पाता है। इसके अलावा ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर हम सही समय पे कैटरेक्ट का तो पूर्णतः समाधान हो जाता है लेंस लगाने के बाद और ऑपरेशन के बाद भी। ग्लूकोमा के मरीजों में समय रहते डॉक्टरी सलाह लेते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो ग्लूकोमा से होने वाली जो भी दृष्टि में कमी होती है उसको हम रोक सकते हैं काफी हद तक।
0: बॉलीवुड रा नामी एक्टर नाना पाटेकर देवलोक हो गया है। 75 साल रा नाना पाटेकर गोवा मायवारा रहवास मत है आज समारे आखिरी सांस लेनी। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में वारा काम छाप छोड़ी। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नवाजी जिया नाना पाटेकर परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत समेत के यादगार फिल्मा माए वारा अभिनय रे अमिट छाप छोड़ी।
2: मैं दिलों में रहता हूँ, उम्मीदों में बसता हूँ, सपनों में जीता हूँ और गम पीता हूँ। जब कोई सपना मुरझाता है उम्मीद सूखती है अरमान झुलस जाता है तो मैं आता हूँ और बरस जाता हूँ।
0: नाना पाटेकर ना श्रद्धा भाव सागर याद करता था का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि नाना पाटेकर वारा अभिनय जनता रो दिल जीतियो।
3: वे बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार जनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई नाना पाटेकर रदेव लोक वेवन पर शोक जतायो है। रब मौसम प्रदेश रा उत्तराद आतुनी हलका माए 10 और 11 अक्टूबर ने बादलों री गाज सागे जोरदार बायरो बाजन और कठे कठे हल्की मझला दर्जा री बिरखा रा आसार है। आ दिना बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और आरएसआर रा हलका माए एड़ो ही मौसम रेवन री संभावना है। 13 और 14 अक्टूबर ने उत्तराद आतुनी राजस्थान और आरएसआर रा जिला माए कठे कठे हल्की बारिश रा आसार है। दूजिकानी जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग रा घनखर हल्का माई मौसम सूखो रेवन री संभावना है।
4: तो अब भी वही दौर चल रहा है जब विंटर आगे आने वाले समय में आने को तैयार है। तो फिलहाल तापमान कंडीशन सामान्य से ऊपर चल रही है, ड्राई वेदर कंडीशंस हैं। आने वाले दिनों में अब चूंकि मानसून चला गया है तो अब पश्चिमी विक्षोभ जैसे जैसे सक्रिय होंगे तो अपने राजस्थान में इवन जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ मौसम में बदलाव होगा। हालांकि जयपुर और आसपास में आगामी दिनों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 10 से 14 अक्टूबर के बीच में एक पश्चिम विक्षोभ का आंशिक असर होगा, बादलों की थोड़ी आवाजाही देखने को मिलेगी।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के जरिए 25 करोड़ विद्यार्थियों ने जोड़ेला। पंचायती राज संस्था वाला चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी फेवन सा गई, पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू हो। टीबी मुक्त भारत अभियान सारू जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ

0: हमारी शुरुआत। पहला दौर में प्रदेश रा 7 जिला शामिल। राज्य रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। 10 अक्टूबर नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय भेवण री संभावना। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आप सुनिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। राजू जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
7: राम राम सा। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोताओं ना, राम राम सा
6: जी। आज गुरु जी एक फोन इन प्रोग्राम होगा जिसमें किसान बहन भाई आपकी खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान स्टूडियो में जो विशेषज्ञ पधारे हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो उनके उनसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान उनका हल पा सकते हैं। स्टूडियो में आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज विशेषज्ञ पधार चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है हेमराज बसवाल, आप उपनिदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय जयपुर। कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। नमस्कार जी। और जैसे कि राजू जी, हमारे स्टूडियो की 4 फोन लाइनें हैं जो कि हम श्रोताओं के लिए रखते हैं, जिसपे वो फोन कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान और सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ, 2200600, 2200700, 2200800, 2366477, ये 4 फोन लाइनें हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि आप मोबाइल से फोन करें तो 0141 जो जयपुर का स्टूडियो कोड है वो जरूर से लगा लें। और हमेशा की तरह यही कहना चाहेंगे कि जब भी फोन करें तो थोड़ा सा रेडियो से दूरी बना के बात करें, ताकि आप जो भी पूछें, आपका जो भी सवाल हो वो स्पष्ट तौर से सुनाई दे, विशेषज्ञ सुन पाएं, समझ पाएं और फिर आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएं, प्रश्नों का दोहराव ना हो और छोटे बच्चों से आप फोन ना कराएं। तो कार्यक्रम में एक बार फिर से हेमराज बसवाल जी का खूब खूब स्वागत है। और जब तक श्रोताओं के फोन आते हैं, हम जो सामान्य से हमारे प्रश्न होते हैं वो हमारे विशेषज्ञ से हम पूछ लेते हैं।
7: तो साहब बताओ, अभी जो राजस्थान रबी की बोई जवाई जो मुख्य जो फसल है तिलनी फसल, वह कौन सी है और दिन की बुआई कब तक करनी चाहिए?
8: किसान भाइयों नमस्कार। अभी रबी सीजन चल रहा है और रबी में जो मुख्य फसल है तिलहनी और राजस्थान में सरसों है। सरसों अभी

0: बुआई का समय चालू है, आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और नमी, जहां नमी संरक्षित है तो अगेती बुआई हो जाती है, और जहां नमी कम है तो भाई किसान भाई पलेवा करके प्री सोइंग इरिगेशन करके बुआई कर सकते
1: हैं। जी बात आगे भी करेंगे, एक श्रोता जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। हेलो किसान।
2: हाँ जी, हमारी यहाँ क्या है कि 10-15 पेड़ बोल रखे हैं, बैरूट से बोल रहा हूँ
1: जी। नाम भी बताएं आपका।
2: सुनील
1: जी, किस चीज के पेड़ बोल रखे हैं?
2: 5 कटहल के थे और 5 नींबू लगे थे।
3: नींबू और किसके?
0: कटहल।
3: कटहल
0: हाँ। समस्या क्या
2: है? उसमें क्या है, नीचे लच्छी नहीं होती है, सफेद लच्छी लाल मुखी है, और सब पेड़ सूखे जा रहे हैं।
0: देखो आप बता रहे कि आपके कटहल और नींबू के पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें लाल मुंह की लट जो लग रही है वो जड़ों में लग रही है पत्तियों पे?
2: जड़ों में
0: है।
2: जड़ों में
0: तो वो लाल मुंह काले मुंह की वो सफेद लट लग रही, जो पीछे से सफेद होती है, गोजा लट करते हैं उसको, उसको सफेद लट कहते हैं, व्हाइट ग्रब कहते हैं, अधिकतर बरसात की सीजन में लगती है। तो उसके लिए एक तो यह है कि उसमें अब तो वो बुआई का समय जो समय होता है खरीफ में, तो उस टाइम तो ये आती है, पनपती है, लेकिन अब तो एक तरह से आपको रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई भी रासायनिक दवा है जैसे एमेडाक्लोप्रिड और एक क्यूनाल्फास दवा आती है, इनका आप मिश्रण दोनों का मिलाकर आप पौधे की जड़ में डालें, गोल डालें, कम से कम 1 लीटर पानी में आप डालें 2-3 ml तो एमेडाक्लोप्रिड डालें और 5 ml क्यूनाल्फोस डाल के और पौधों की जड़ों में डालें, उसमें थाले में डालें, ताकि वो नीचे तक जाए और वो जड़ को, वो जड़ में जो भी लट है वो खत्म हो जाए या वो रिपेलेंट हो जाए, वहां से भग जाए। अब तो ऐसा है, देखो इसमें आप जो जड़ के आसपास की जो मिट्टी है उसको एक बार नीचे तक हटाएं, तो उसमें यदि कोई गोजा लट निकलती है तो उसको खत्म करें, उसके बाद नई मिट्टी उसमें शिफ्ट करें, यदि उसके अंडे हैं या कोई उसके लार्वा है तो वो भी निकल जाए, यदि वो रहेंगे तो वापिस पनप जाएंगे, तो नई मिट्टी शिफ्ट कर दे तो फिर उसके साथ दवाई डाले तो वो नहीं होगी बाद में। और पेड़ के उसके आपके पौधों के आसपास ज्यादा यदि पेड़ पौधे हैं बड़े तो उनको भी कटाई छटाई करें, ताकि वो लट का जो है उसका भ्रंग है वयस्क भ्रंग वहां नहीं बैठे और वो अंडे नहीं दे।
3: हेलो हेलो
4: हेलो।
3: हाँ जी, हेलो किसान, किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है।
4: हाँ जी सर, नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार जी, क्या जानकारी चाह रहे हो?
4: जानकारी सर, हमारे गाजर बोई हुई है, उसकी वो जड़ काली पड़ रही है नीचे से।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: जोधपुर से।
0: अच्छा किसान भाई, जैसे आप बता रहे हो कि गाजर बोई है और उसकी जड़ काली पड़ रही है अभी, तो
4: मतलब जड़ काली पड़ के वो ऊपर से बढ़ रही है।
0: या, तो अभी क्या है कि अभी बोई, कितने दिन हो गए उसको बोई?
4: लगभग हो गए 10 दिन।
0: तो अभी क्या है कि जितने भी जड़ जनित रोग वो जमीन में होते हैं, ये फफूंद जनित रोग होते हैं, तो जड़ पे लगते हैं बुआई के आसपास, जो एक नर्सरी में लगते हैं राइजोटिनिया फाइटोपथोरा और पीथियम नामक कवक लगते हैं, तो वो जो भी फसल बोते हैं उसकी जड़ को जमीन के पास से गड़ा देते हैं और नीचे जड़ गड़ा देते हैं। इसमें आप कोई भी अंतर प्रवाही फपूंद नाशी दवा डाले, इसमें एक मेटालाक्साइल दवा आती है, पाउडर आता 35% WP, वो घोल के डाले तो वो जो भी जड़ गल रही है ना वो खत्म हो जाएगी आपकी, वो जड़ गलन रोग वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नर्सरी में आता, नर्सरी जो भी कोई अपन बोते हैं या ज्यादा बीज बोते हैं नर्सरी टाइप, तो उसमें ये जड़ गलन रोग आ जाता है, ये दवाई डाले और फिर थोड़ी सिंचाई कर दे तो ये जड़ गलन नहीं लगेगा।
1: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान।
5: हेलो नमस्ते।
1: नमस्कार। हेलो किसान, नाम बताइए।
5: मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मंडार तहसील है, मेरी कारगिल जिला है
1: जी। क्या पूछना चाहते हैं आज?
5: मैं ये पूछना चाहता हूँ सरसों में डीएपी कितना वरना चाहिए?
0: हाँ महेंद्र सिंह जी, सरसों एक तिलनी फसल है, तो इसमें आप ज्यादा डीएपी नहीं लेके रहे, सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग करें बुआई में तो बहुत अच्छा रहेगा। अपन किसान भाई

0: ज्यादातर डीएपी की तरफ जाते हैं। सरसों को गंधक की जरूरत होती है उसके दाने और पौधा बढ़ने के लिए, तो आप सुपर फास्फेट यूरिया का प्रयोग करें। और यदि आप डीएपी बोना चाहते हैं तो उसमें आप ये बीघा, जैसे आपके कच्ची बीघा लो या पक्की बीघा, पक्की बीघा में आप कम से कम आप ले लो 20 से 30 किलो डीएपी पर पक्की बीघा आप ले लो, और सुपर फास्फेट यूरिया का करो तो आप उसमें कम से कम आप एक हेक्टर में 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होता और 50 किलो आप लो यूरिया, दोनों को मिला के और बुआई करो और उसके बाद पटवास लगा के और फिर सरसों की बुआई करो तो सरसों जोरदार होगी क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा में सल्फर मिलेगा और फास्फोरस दोनों मिलेंगे।
1: हेलो हेलो किसान।
2: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप?
2: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी, गांव रायपुर जोड़ी में से जी।
1: जी बताए।
2: मेरे जी 4 पेड़ है जी लेस लेके
0: जी।
2: हेलो।
0: हाँ हाँ बताइए।
2: तो उसमें से वो 3 साल के हो गए जी, वो उसको फड़ के आने की संभावना, मतलब कीड़े मकोड़े ज्यादा चिट रहे उस पर।
0: राजेंद्र जी आप बता रहे की लेस वाले पौधे है 3 साल के हो गए। एक तो इसमें जैसे फल नहीं आने का तो कई कारण होते हैं, एक तो उसमें वो वैरायटी कैसी है आपने सही किस्म चुनी है, दूसरा होता है उसमें जो पोषक तत्व जिसमें आप देसी भी ले सकते हो उर्वरक भी लेते हो तो वो प्रॉपर दे रहे कि नहीं दे रहे, एक ये भी कारण।
2: खाद खुद सब कुछ
0: ठीक है,
2: खाद पानी सब कुछ दे रहे हैं
0: ठीक है। अब इसके बाद उसमें हार्मोनल इम्बेलेंस, हार्मोन का असंतुलन भी हो जाता तो फल समय पर नहीं आ पाते।
2: हार्मोन
0: इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जैसे अपने हार्मोन होते हैं ना अपने शरीर में, जैसे डायबिटीज का इंसुलिन होता इस तरह उनमें भी हार्मोन की कमी आ जाती है, तो इंडोल एसिटिक एसिड होती है या नेफ्थलिंग एसिटिक एसिड होता है, हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन आता, इनका आप 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें तो उसमें संतुलन हो जाएगा, फल समय पर आने लग जाएंगे। और कीड़े मकोड़े की जहां तक बात कर रहे हो तो उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े से, या तो बड़े पौधे हो गए तो इसमें प्यूनालफास दवा आती है एक पानी के रूप में तरल, उसको आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर दें और वो कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाएंगे, कोई लट भी होगी खत्म हो जाएगी।
2: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी। तो सर आप बात कर रहे थे कि अपनी जो सरसों की बुआई के बारे में, उसके आगे पूछना चाहेंगे कि इसमें जो बीज दर है वो कितनी रखनी चाहिए?
0: देखो
3: एक बार फोन आया, फोन बात कर लेते हैं। हेलो किसान।
2: हाँ नमस्कार जी।
3: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सर मैं बिहार जिले से बोल रहा हूँ, मंगल क्षेत्र रोशन खान
3: जी। क्या पूछना चाह रहे हैं आज?
2: सर से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट बुआई के अंदर यूरिया कितना डालने मेरे जमीन के अंदर, क्या दीमक का प्रकोप कुछ ज्यादा है?
0: किस चीज का ज्यादा है?
3: दीमक।
0: दीमक, दीमक। आप फर्स्ट बुआई में यूरिया की जरूरत नहीं है, मतलब बुआई के समय तो आप बेसल जो ऊर के बोना पड़ता है बुआई से पहले, कोई सा भी आप फास्फेटिक फर्टिलाइजर और मिक्सअप जो नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर या एनपीके तीनों का वो आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद आप कर रहे हो दीमक की समस्या, दीमक के लिए आप बुआई के समय बीज उपचारित करके बोए, उसमें फिप्रोनिल 5% सोल्युबल कंसंट्रेट आता उसमें मिला के, हर फसल का अलग अलग होता, सरसों में कम होता, चने में 5 ml प्रति किलो के हिसाब से डालते हैं, गेहूं में भी लगभग इतना ही 5 ml प्रति किलो के हिसाब से बीज में मिला के वो बुआई करते हैं
2: जी जी।
0: और सिंचाई के बाद, सिंचाई के साथ आप भी दे सकते हैं फिप्रोनिल 5% इस दवा को।
2: ठीक सर, धन्यवाद।
3: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान।
4: हेलो
3: जी, किसान वाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो।
4: हेलो
3: जी, किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आज?
4: एम आर चौधरी जी, अपूर सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं
3: जी चौधरी जी
4: पूछ रहा था सर, मैंने यहाँ प्लाट में 400 गज प्लाट है, उसमें सब्जियां बोई
0: जी,
4: पूरे में दिमक लग गई, और बीज भी मैंने जो आपका जहाँ जो ये दुकानें आपकी है वहाँ से लिया है।
0: देखो
4: और
0: बताइए,
4: और 2 घिया के पेड़ है

0: मेरे हिसाब से 100 घर सब्जी खा सकते, इतना फैला हुआ उसमें एक भी नहीं लगी पिछले 4 महीने।
1: बिल्कुल, आप कर रहे हो बीज अच्छी कंपनियों के लिए, अच्छी दुकानों से लिए, लेकिन बीज कारण नहीं हो सकता, वो दीमक तो एक कीट है, चाहे अच्छा लो चाहे देसी लो कैसा भी लो, लेकिन उसका उपचार करना बहुत जरूरी होता। यदि दीमक ज्यादा है ना तो उसमें गर्मी में, एक तो सबसे पहले हर साल गर्मी में एक अच्छी तरह जुताई करके, 400 गज के जो प्लाट बता रहे हो उसमें बढ़िया गर्मी में जो चटक गर्मी होती है वहां जुताई करके छोड़ो 15-20 दिन महीना।
0: अच्छा जी।
1: तो इसके जो भी नीचे टर्माइट ईडियम नीचे वो घर वर बन रहे वो सब खत्म हो जाए, इनके अंडे जो भी है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप बता रहे हो कि वो घिया का पौधा लग नहीं रहा, तो घिया में क्या है कि कई बार हार्मोन का बैलेंस हो जाता है, बहुत बढ़वार तो खूब होती, बेलड़ी खूब बढ़ जाती है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो उसमें आप कोई भी हार्मोन का, एक तो क्या है कि उसमें नत्रजन उर्वरक जैसे यूरिया वगैरह मत दो, इतना बढ़वार कम हो, अपन को फल ज्यादा लेने, ज्यादा बढ़वार नहीं लेनी। तो उसमें कोई भी हार्मोन जो भी ऑक्सीजन हार्मोन है आता बाजार में मिलता, उसका 5 ml 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे, उसमें नेप्थलिनिक एसिड आता, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आता, वो ऑक्सीजन हार्मोन के नाम से मिलता, एक इसमें फिप्रो एक अलग हार्मोन है जिब्रिलिक एसिड जो फलों को बढ़ाने में काम करता, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं इनके अलावा, तो उसमें आपके फल आ जाएंगे। बेलड़ी
2: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हेमराज बसवाल उपनिदेशक कृषि आयुक्तालय जयपुर आज हमारे साथ हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे पर इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है
4: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: इतना बोल रहा
4: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
7: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
6: वो कैसे?
7: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
6: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
8: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम किसान वाणी में दोबारा स्वागत, और आपने साथ आज विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं हेमराज बसवाल उपनिदेशक कृषि आयुक्तालय जयपुर। हेलो,
9: राम राम जी।
8: राम राम जी। हेलो किसान, किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या जानकारी चाहते हैं?
9: साधु सर बोलूं जी, राम कुमार रिवाड़।
1: हाँ बोलिए राम कुमार जी, क्या समस्या?
9: समस्या जी, मैं इस आंवले की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ।
1: देखो, आंवला एक अपने फलदार फसल है और इसको दो सीजन में आप बो सकते हैं, एक तो जुलाई अगस्त में और एक फरवरी मार्च में। यदि आपकी सिंचाई की व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में कर सकते हैं। इसके लिए पहले लेआउट तैयार करें और खेत को समतल करके लेआउट बनाए और गर्मी में उसके लेआउट करके गड्ढे खोदें, उसके बाद उसका मिट्टी कम से कम 15-20 दिन बाहर रहे, उसमें फिर गड्ढों को बिल्कुल एक नियत विधि है उसके अनुसार गड्ढों को खाद और कीटनाशक और मिट्टी मिला के और ये फफूनाशी दवा मिला के उस गड्ढों को भरे, उसमें बरसात के सीजन में जो आप जुलाई अगस्त में आप पौधे लगाएं। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो फरवरी मार्च में लगा सकते।
9: पौधे की दूरी कितनी रखनी है?
1: दूरी अलग अलग है, जैसे आप उसमें खेती करना चाहते हैं तो उसमें दूरी ज्यादा रखनी, 6x6 मीटर में रखते हैं, और
9: एक बीघे में कितने पौधे लग सकते हैं सर?
1: अब इसमें आप बीघा अब हेक्टर का आप कर दो, जिसमें कैलकुलेट कर लेना अलग अलग। यदि आप 5x5 मीटर लगाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप उसमें भाग दे।

0: 10,000 में एक हेक्टर का पौधा आ जाएगा। आप उसकी डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी कम रखेंगे, केवल बगीचा ही रखेंगे तो आप 4 मीटर भी रख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग वेराइटी आ गई आजकल, हाथी झूल फ्रांसिस आ गई और चकिया है, तो हर एक फसल हर एक पौधे की हर एक किस्म का अलग गर्त होता, उसकी फेरी फेरी ज्यादा होती।
1: इसकी पूरी जानकारी सर कहां से मिलेगी मुझे?
0: आप हमारे आपके गंगानगर में उपनिदेशक उद्यान कार्यालय है, वहाँ हमारे उपनिदेशक महोदय बैठते हैं, वहाँ आप जाइए, वहाँ बिल्कुल आपको पूरी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, बसरते वहाँ कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक भी आपके क्षेत्र में रहते हैं वो भी, लेकिन आप कार्यालय जाए वहाँ से पूरी जानकारी आपको इस आंवले के बारे में मिल जाएगी।
1: धन्यवाद जी।
2: धन्यवाद फोन करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बसवाल साहब, हम सरसों की फसल की बात ही कर रहे थे
0: जी,
2: बताएं।
3: एक तो इसके अपने बीज दर के बारे में आप बताइए और बीज को उपचारित करने के बारे में बताइए।
0: देखो सरसों एक तिलहनी फसल, एक मुख्य रबी की तिलहनी फसल है, इसमें लगभग किसान भाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बोते हैं और कुछ जहां सिंचाई से बोते तो आखिरी अक्टूबर तक भी वो बुआई कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, तो ये वैसे इसमें बीज में सल्फर होता है तो ज्यादा कीड़े तो नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें फफूंद जरूर लगती है, इसमें सफेद रोड़ी बाद में लग जाती है और फिर नीचे अर्ली स्टेज में इसमें जड़ से जनित रोग लग जाता, इसलिए इस बीज को अपन मैंकोजेब दवा आती है 75% WP, इससे 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोए तो उसमें फिर वो फफूंद जनित रोग अपने जमीन में नहीं लगते पौधे।
2: हेलो किसान, हेलो हेलो
4: हेलो, खेती बाड़ी नमस्कार
2: जी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, नाम बताएं आप अपना, कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं।
4: प्रेमदास बोल रहा हूँ लाडलू से, तहसील लाडलू, जिला लिलवाना कुतामन से।
2: जी क्या पूछना चाहते हैं आज?
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मिर्ची है, मिर्ची छोटी छोटी लग रही है और उनके जो पत्ते है वो सिकुड़ रहे हैं।
0: प्रेमदास जी, जो मिर्ची अभी पौध लग गए कितने दिन की हो गई?
4: पौध नहीं वो बड़ी है।
0: अच्छा बड़ी है, उसमें इसमें माथाबंदी रोग करते हैं, इसको प्रण कुंचन करते हैं, इसमें TMV 1 नंबर का वायरस लग जाता है तो पत्तियों को सिकुड़ा देता, पत्तियों को मोड़ देता, माथाबंदी रोग करते हैं। अब इसमें यही है, यदि पुरानी मिर्ची है तो ज्यादा गुथरा, यदि माथा बंद ज्यादा ही होता उनकी कटिंग करे ज्यादा हो रहा तो, और यदि कम मुड़ान हो रहा तो उसमें एमेडा क्लोप्रिड दवा आती 17.5 SL, वो आप 10 ml 15 लीटर पानी में मिला के या 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, या थाया मेथोक्साम 25% वाटर सोल्यूबल ग्रेनुल आते हैं वो आप 5 से 10 ग्राम के लगभग एक दानेदार दवा आती है वो आप 10 ग्राम उसमें डालें 15 लीटर पानी में वो घोल के, और उसमें थोड़ा सा चिपकनी वाली दवा डाल के उसमें छिड़काव करें, और 15 दिन में आप छिड़काव करें तो माथाबंदी आपकी काफी हद तक सुधार आ जाएगा, और ज्यादा गुथरा तो उनको काट के हटाए क्योंकि वो फिर वो सुधर नहीं सकता।
2: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हेलो
5: नमस्कार साहब।
3: हेलो किसान नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या नाम है सर आपका?
5: मेरा नाम ताज मोहम्मद, मैं जोधपुर जिला इस्लाम नगर में बोल रहा हूँ साहब।
3: क्या जानकारी चाहते हैं?
5: जानकारी यही है कि हमारे तो सब पहले आप जो जवाब दे और जो मारे फरू तर में आपने बहुत बहुत धन्यवाद दे, फोन इन कार्यक्रम शुरू कियो जो आपने धन्यवाद देने वास्ते साहब कियो। मैं
0: कोई समस्या हो ताज मोहम्मद जी?
5: समस्या तो हाल बना तो साहब कई हो नहीं, चार वक्त है
0: रब का, रब का ये बना रहे रहमो करम।
2: हेलो किसान।
6: हाँ नमस्कार साहब।
2: नमस्कार। हेलो किसान, किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
6: मैं तो सर कर रहा हूँ जिला फरोदी से।
2: जी क्या पूछना चाहते हैं आज?
6: सर ये पूछना चाहते हैं ये जीरे के समय 10 महीने में बीजे या 11 महीने में?
0: देखो अभी अब 10वें महीने के आखिरी से लेके और 15 नवम्बर तक आप जीरे की बुआई कर सकते हैं, ये मौसम के ऊपर है, तापक्रम यदि सही रहता है और नीचे चला जाता है तो आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन आप 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।

0: हमारे यहाँ फलौदी पर तापमान बहुत ज्यादा
1: बहुत ज्यादा फलौदी में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और ठंड भी बहुत कम हो जाती है,
0: ठंडी ज्यादा और गर्मी
1: ज्यादा। तो अभी तापक्रम को देख के ही बुआई करना, आपके वहाँ बहुत ज्यादा तापक्रम अभी भी।
0: अच्छा अच्छा, है ना, ये आपने प्रोग्राम शुरू किया बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा शुरू कर दिया आपने।
1: बिल्कुल
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: किसानों के लिए होना चाहिए ये, मतलब
1: बिल्कुल होना चाहिए, सब होना
3: चाहिए। रबी फसल में अभी अपने जो दलहनी फसलें बुआई करें तो उसमें अपने जिप्सम की जो मात्रा है वो कितनी डालनी चाहिए?
1: किसान भाइयों, जैसे तिलहनी और दलहनी फसलों में जिप्सम बहुत अच्छा काम करता है। ये इसमें एक तो गंधक होता है, कैल्शियम होता है, तो ये तिलहनी फसलों में तो तेल की मात्रा बढ़ाता है और दलहनी फसलों में ये दाने को मोटा और सुडोल चमकदार बनाता है इसमें, तो इसलिए 250 किलो के आसपास आप प्रति हेक्टर जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको बुआई से पहले ही खेत में डालें और बढ़िया उसमें हल से जोत के और मिट्टी को समतल बना दें।
3: हेलो किसान, हेलो
2: हेलो
4: हेलो,
3: किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या जानकारी चाहते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी हम फलौदी जिले से बात कर रहे हैं, मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ।
3: जी मोहम्मद जी, क्या जानकारी चाहते हैं?
4: एक मेरे अभी अभी मैंने टेली का पौधा लगाया था।
3: अच्छा, केजरी का तो, सिस्टम क्या बोल रहे हैं?
4: टेली टेली जो साया के बात होती है ना।
3: हाँ,
4: तो उसमें क्या है कि पत्ते पीले पड़ते हैं और मर रहे हैं,
1: तो
4: पानी भी
1: आप कह रहे हो कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसके?
4: हाँ, पत्ते पीले पड़ते हैं और जड़ रहे हैं।
1: कई कारण होते हैं, एक तो इसमें होता है कि पानी की मात्रा समय पे नहीं होती है। पानी तो बराबर दे रहे हैं आप?
4: ना, पानी तो बराबर दे रहे हैं।
1: दूसरा आता है इसमें पोषक तत्वों की कमी, मतलब उसमें खाद वाद दिया कि नहीं, पुराना गोबर का खाद और उर्वरक दिए?
4: अच्छा, पुराना खाद देना पड़ेगा।
1: वो पुराना सड़ा खाद,
4: जो बकरी की खाद दे या ये
1: कोई सा भी दो, पुरानी होनी चाहिए। बकरी की खाद दो तो कूट के दो।
4: अच्छा,
1: और उसमें थोड़ा सा डीएपी और या एनपीके डालो। कितने दिन का पौधा?
4: पौधा तो अभी बारिश के मौसम में लिया था।
1: आप छोटा ही पौधा अभी तो, उसमें आप ये भी थोड़ा सा देशी खाद भी दे उसके साथ, कोई 100 ग्राम आप डीएपी या एनपीके डाले, उसको अच्छी तरह उथावड़े में डाल के मिलाए और पानी दे दे समय समय पे उसको।
4: और एक यहाँ पर जो दीमक बहुत ज्यादा है, क्या है दीमक?
1: दीमक तो क्या है कि एक सर्वभक्षी कीट है जो सब जगह हो जाता, नमी कम होते ही ऊपर आ जाता, तो इसमें दीमक के लिए तो अभी तो उसको दीमक को मारना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको भगा सकते हैं अपन दवाई से। तो एक फिप्रोनिल दवा थी, उसको आप पानी के साथ घोल के दे सकते हैं। फिप्रोनिल 5% की आती है, मिलाई आता, तो उसको आप 2 से 3 ml एक लीटर पानी में मिलाकर आप वो सिंचाई कर सकते हैं, उससे दीमक भग जाएगी आपकी।
3: किसानों ने कार्यक्रम में फोन करवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राजू जी
3: जी,
2: हेलो किसान कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, हेमराज बसवाल, उपनिदेशक कृषि आयुक्तालय जयपुर। आज आप स्टूडियो में आए, बहुत बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज हेलो किसान कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो दे रहे इजाजत दें आशा को
3: और राजू को,
2: चलें और करें
1: नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

शबीर अहमद की बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत, राज फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ें, फिल्म बॉडीगार्ड से आपको सुनवा रहे हैं गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवा रहे बाजीराव मस्तानी फिल्म से, आवाजें पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की, गीत सिद्धार्थ और गरिमा ने लिखा, संगीत निर्देशन है संजय लीला भंसाली का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना बाजीराव मस्तानी फिल्म से, और अगला गीत है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अग्नि साक्षी फिल्म से।

आप सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, अरुण भैरव के बोल, अनु मलिक का संगीत, मुझसे शादी करोगी इस फिल्म का गीत।

श्रोताओ, बॉबी फिल्म का गीत नरेंद्र चंचल की आवाज़ में था, आप सुन रहे थे, और अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत, दंगल फिल्म का गीत।

0: और प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म हुआ। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है लोक संगीत के कार्यक्रम में इंदिरा शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। श्रोताओ, लोकगीत आपको सुनवाते हैं, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: सुनिए इंदिरा शर्मा और साथियों की गाएं लोकगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

श्रोताओ, लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे इंदिरा शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। इसी के साथ हमारा लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब सुनिए समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए।

0: चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गयी है।
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिस बिलो द सेट थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वीं संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तभी से जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी साफ चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए

0: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों

0: प्रगति तो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी रेगुलेशन निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीपफेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
2: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन

0: उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीपफेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
1: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा न दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण

0: सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: सेंसेक्स 1,045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़क कर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
2: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
4: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
2: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month.

लता मंगेशकर की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गाना आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे संगीतकार डी बर्मन का था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: करो वादा,
6: हाँ जी वादा।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: भूल खजाना
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है, और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना।

जय श्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयां, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी दो संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान

शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी।

सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था। ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था।

0: थाम दो।
1: सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राशि ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र।

सन 1965 में आई फिल्म दो दिल इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर।

बात 1966 की है, फिल्म आई सगाई। ये SD नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और विश्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी।

मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत SH बिहारी के थे और संगीतकार थे OP नहीं।

0: सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है।
1: हम

सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है।

अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कला

अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो जापान में केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती है। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राशि की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना।

आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे। जीपी सिप्पी।

भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राजश्री की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री। विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है, यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई है।

0: हमने अभिनेत्री राशि के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

पेशे खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत लफ्जों में बयान नहीं की जाती, कभी खुशी कभी दर्द दिल में छुपी होती है। कायनात में ये दो दिलों का सफर होता है, कोई कहता है तो कोई सुनता है। मुलाकात की एक ऐसी ही हसीन शाम को हमने भी किया उनके नाम। तरंग गुलों के निखर गए, नसीम में बहार भी उनकी खुशबू से मुअत्तर हो चली। नज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई, दर्द का चांद छुप गया, हिज्र की रात ढल गई।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। राज दिल कभी कभी अफसानों में बयान नहीं होता, कायनात भी ऐसी पाक मोहब्बत का एहतराम करती है। यादें मोहब्बत की होती हैं बड़ी शादाब, गुलिस्तां की तरह अफसानों में भी दोहराई जाती हैं। दो दिल जब धड़कते हैं एक दूसरे को सदाएं देते हैं, मोहब्बत का नाम लेकर वो नींद की आगोश में होने नहीं देता, रातों को तसव्वुर तेरा सोने नहीं देता।

बेकरार वक्त है, संभाले न संभलता है, तो हमारे दिल को तड़पना है हर बहाने से। फिर एक बार देखा है हमने वो नाजनी चेहरा, वो बेख्याली का आलम

मेरा गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और

0: की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।